नहीं, दीन के सूरज का उजाला न रहा। जुल्मते कुफ्र मिटाने के लिए आ पाए हुस्न अखलाक मोहब्बत।

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
1: FM247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट अजय समीहा. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ सुबह सुबह. और खैर लोग रेडियो सुनते हैं गाड़ी में, लेकिन ज्यादा मुझे मतलब कभी कभी वो लोग बड़े कमाल लगते हैं जो कहीं जा भी नहीं रहे होते फिर भी रेडियो सुनते हैं, जबकि उनके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारी चीजें देखने के और सुनने के और पढ़ने के. एनीवेज, और हम अपने शो का आगाज करते हैं हमेशा कुरान के तर्जुमे के साथ, अपना मॉर्निंग शो. और हम सूरह मुत्तफिफीन का तर्जुमा पढ़ रहे हैं. आइए आगे पढ़ते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम पढ़ते हैं आयत नंबर 9 से. उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है जो इंसाफ के दिन को झुटलाते हैं, उसे नहीं झुटलाएगा मगर हर सरकश बड़ा गुनाहगार. जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहता है ये कुरान अगलों की कहानियां हैं. ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उनके कमाए हुए अमाल ने उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है. यकीनन वो उस दिन अपने रब के दीदार से जरूर महरूम होंगे, फिर बेशक वो जरूर जहन्नुम में दाखिल होने वाले हैं. और मैं आपसे हमेशा यही कहूंगी कि जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें, अपनी सुबह का आगाज करें अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से कि उसने आपको एक और दिन दिया है कुछ कमाल करने के लिए. और अभी हम सुनते हैं चुनी जमशेद की आवाज में ये कलाम.

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. This program.

अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम लोग जो है अब बताने वाले हैं आपको आज का हमारा टॉपिक क्या है। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप लोगों की जिंदगी के अंदर, यानी हम सब की जिंदगी के अंदर, क्या इनफ फिजिकल एक्टिविटी है? क्या हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं? हम चलते फिरते रहते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, या हम बस बैठे ही रहते हैं? हमारा काम है सिर्फ बैठे रहना, और ये बैठे रहने से लोगों को बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। और मुस्तकिल अगर आप एक ही जगह बैठे रहते हैं तो फिर आप ना सिर्फ का वेट बढ़ता है बल्कि जो कुर्सियां बनी हैं वो इंसानों के लिए, इंसान की बॉडी के लिए नहीं बनी। मतलब इंसान को इस तरह बैठना जो है वो उसके लिए नहीं बना था, वो चलने फिरने के लिए बना था, वो जमीन पे बैठने के लिए बना था, दरख्तों पे बैठने के लिए बना था, वो मतलब इतनी देर घंटों घंटों कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं बना था। इसी वजह से लोगों के जो स्पाइन के मसले हो रहे होते हैं, उनको दर्द कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ दर्द नहीं हो रहा होता। तो उसका असल मकसद ये भी है कि आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने हिलने जुलने के लिए बनाई थी, जो आपने एक जगह बिठा दी है। और आपको ये भी लगता है कि जी आपने बैठ के बहुत पैसे कमाने हैं और पैसे कमा भी रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली आपकी असल कमाई आपकी सेहत है और आपका किरदार है, आपके अमाल हैं। ये कमाई वमाई यही रह जाएगी, ये तो गेम है एक्चुअली। मतलब कोई ज्यादा कमाएगा, कोई कम कमाएगा, कोई बिल्कुल ही नहीं कमाएगा, तो ये नहीं है। आपको चाहिए कि अपनी बॉडी का, जो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा आपका तोहफा है, उसका आप ख्याल कैसे रखते हैं। और उसके लिए जरूरी है दोस्तों कि आप थोड़ा चलें फिरें। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या आरजे समिया इंस्टाग्राम पे। एक तीसरा तरीका भी है दोस्तों कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम, आपका पैगाम, और उसको भेज दें 36365। तो आपने मुझे ये बताना है कि क्या आप एक सुस्त काहिल इंसान हैं जो हर जगह हर वक्त बैठे रहते हैं, या आप एक्टिव रहते हैं, डांस करते हैं, इधर उधर बल्ले बल्ले वॉक्स पे जाते हैं, जिम जाते हैं, जो भी आपका सीन है हमें बता दें, क्योंकि हम ही नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे आप? कौन पूछता है आपको यार? ओके, नहीं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ बेवकूफ लोग होते हैं दुनिया में। फरहाद मेमन का मैसेज आया, कह रहे हैं हाँ वर्जिश करना मेरी आदत में शामिल है। मेरे ख्याल में जिस्मानी वर्जिश के साथ दिमागी वर्जिश भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एक्टिविटी आपको, आपके ब्रेन को भी बहुत इम्पैक्ट करती है, कि आपका ब्रेन ज्यादा फोकस फील करता है जब वो आप एक्सरसाइज करके कोई काम करते हैं, तो यू फील लाइक यू नो मोर फोकस, अदर देन आप घंटों घंटों जगह बैठे रहे तो आपको कभी कभी चीजों का हल नहीं नजर आता या समझ नहीं आता। इकबाल हुसैन साहब, थैंक यू, आप जितने प्यारे फूल भेजे, येलो फ्लावर्स माई फेवरेट। और राइट, और अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये अंग्रेजी गाना। वो कह रहे हैं, वो घुटनों की बातें कर रहा है कि यार वो अगर फिजिकल एक्टिविटी ना हो तो कहते मोहब्बत करना भी मुश्किल हो गया है मेरा, कि मोहब्बत करना जो है ना वो मेरे घुटनों के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसी ही कुछ बातें इस गाने में हो रही हैं, आइए सुनते हैं।

0: और एक्चुअली वो गाना जब लगता है तो मेरी सांस फूल जाती है, कि मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि कोई ना कोई मूवमेंट तो लाइफ के अंदर होनी ही चाहिए. सो आई जस्ट की वेन एवर दिस सम सॉन्ग जो बड़ा लाइक मुझे लगता है इस पर डांस वांस हो सकता है तो मैं तो कर रही होती हूँ. तो खैर आपकी जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और हमारा मसला ये है, तो हम वैसे गरीब मुल्क, एक तो चलो गरीब मुल्क हो है, गरीब मुल्क के लोगों को ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज्यादा हिलना जुलना चाहिए. एक तो गरीब है हम, ऊपर से हम लोग अपनी सेहत का भी नहीं ख्याल करते. मतलब बंदा चलो गरीब लोगों की तरह एक्टिव हो, काम करे, वो भी नहीं है हमारे अंदर. हम अजीब व गरीब है. हम वो हैं कि जिसने मतलब वेस्ट की भी बुराइयां ज्यादा खुशी से अपनाई हैं बजाय इसके कि उनकी अच्छाइयां. और वहां पर बहुत सारे लोग सुबह सुबह भाग रहे होते हैं, दे गो फॉर अ रन, दे गो फॉर अ जॉग. हमारे यहाँ भी जाते हैं लोग, ये नहीं कि हमारे यहाँ सभी सो रहे होते हैं, लेकिन ये कि बहुत ही ज्यादा कम जो है लोग सुबह निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या वॉक पे जाते हैं ऑफिस पे जाने से पहले, या जिम जाते हैं ऑफिस जाने से पहले, विच इज वेरी वेरी हेल्थी. एंड इट इज नॉट लाइक कि आप बहुत कूल हैं ये कि आप जिम जा रहे हैं. इट्स जस्ट दैट दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. आपको अपनी बॉडी को हिलाना है, आपकी बॉडी जो है ना वो काम करने के लिए, वेट उठाने के लिए. अब वो कहते हैं कि जी वेट हर इंसान को उठाना चाहिए, इवन जब अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तब तो और जरूरी है आपके लिए वेट उठाना, क्योंकि आपकी बोन्स की डेंसिटी आप कम हो रही होती है. इसलिए जब आप वेट उठाते हैं तो आपकी बोन्स के लिए ये अच्छी चीज है. या आप जंपिंग करते हैं. अब वो औरतें मुझे कह रही हैं, अच्छा मैं मुफ्त की लाइक एडवाइस दे रही होती हूँ लोगों को, जो अच्छी बात है. खवातीन, ओह माय गॉड, ये जो हमारी खवातीन है स्पेशली ओवर 50, और तो वो तो उन्होंने अपने आप को ऐसा छोड़ ही दिया है बिल्कुल शादी के बाद और बच्चों के बाद, के बिल्कुल वो मतलब ओवर वेट हो गई है. मैं क्या, और मैं उनको बोलूँ कि यार आप जंपे लगाए, कि तुम तो पागल हो, तुम तो हमेशा ऐसी बातें करती हो. तो वो कह रहे हैं कि जंपे लगाना अच्छी बात है, आप उछलें, जैसे कोई मेहमान आ जाए जो उछलें. मैं कहा हमारे उछलने के कितने ज्यादा मौके हैं. लाइट आ गई, जैसे कल लाइट गई हुई थी, लाइट आ गई, उछलें भाई उछलें, एक्साइटेड हो. गैस आ गई टाइम पे, गैस भी वैसे पता है कब आएगी, लेकिन लिटरली जब भी आप चूल्हा खोलें इत्तेफाक से गैस आ रही होता, खुशी गैस आ रही है, गैस आ रही है. तो ये हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां हैं जो हमारे हुक्मरानों ने दी, आप उसको एंजॉय करें, चलें फिरें. क्योंकि अपनी सेहत आपकी सबसे बड़ी, मैं आपको बता रही हूं कि सेहत नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता. आप इबादत भी नहीं कर सकते अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है. तो खैर ये हमारी बातें हैं. आज का हमारा टॉपिक यही है कि आपकी जिंदगी में कितनी फिजिकल एक्टिविटी है, आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, या आप बस कहते हैं बस मुझे छोड़ दो मैं लेटा ही रहूंगा. ऐसे भी लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि बस वो सोते रहें. तो आप तो हमें बताएं, हमें मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे, या एट आज समिया इंस्टाग्राम पे. बुरहानुद्दीन साहब का मैसेज आ गया है एक तीसरे तरीके पे. वो तीसरा तरीका ये है कि अपने मैसेज बॉक्स में चाहें टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर. तो वो कह रहे हैं कि समिया जी आपके क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है. ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत बखैर है. आपकी कैसी है, आप वॉक पे नहीं जा रहे होंगे, तो जरूरी है कि आप जो लोग चल फिर सकते हैं वो एक सही टाइम पे एक्सरसाइज की आदत डाल लें, वरना आगे जिंदगी जो है ना वो मुश्किल हो जाती है. और राइट वक्त हुआ एक ब्रेक का दोस्तों, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद आरजे समीहा.
1: It's 8:30 AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye. Cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं. मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है. डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है. गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है. جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے۔ جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا، دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیشن کو اس کے ریاکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں حقیقت بن چکا ہے، جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا، کیونکہ یہ صرف علاج نہیں امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان، مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
3: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مدیحہ ساجد ہے، میں ڈائی یونیورسٹی ہاسپٹل کے شعبہ جلد میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ جلد پر سفید دھبے بچے، جوان، درمیانی عمر اور بوڑھے مرد اور عورت کے جسم کے کسی بھی حصے پر مختلف وجوہات کی بنا پر بن سکتے ہیں، جن میں سے بیشتر وجوہات قابل علاج ہیں۔ اس لیے ضروری اور بہتر ہے کہ جسم کے اگر کسی بھی حصے پر سفید دھبے نمودار ہوں تو مستند ماہر جلد سے بر وقت تشخیص اور علاج کے لیے معائنہ کروایا جائے۔
5: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے۔

0: इंतजार। शहर कराची की सड़कों और शाहराओं पर ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। ऐसा मंडल को मिलने वाली इतला के मुताबिक इस वक्त वो ट्रैफिक जो मंजिल पर से कायदाबाद और कायदाबाद से मरीन सिटी की जानी आ रहा है, दरमियानी रास्ते पर अब से कुछ देर पहले एक गाड़ी के खराब होने की वजह से ट्रैफिक सेवाएं मुतासर हो रही थी। अब उस गाड़ी को वहां से हटा दिया गया है। वो तमाम लोग जो रास्ते को इस्तेमाल करना चाहते हैं बासानी इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिलों की जानी सफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो ट्रैफिक जो यूनिवर्सिटी रोड सपूरा चौरंगी से नीफा चौरंगी की जानब जा रहा है, तामीरी काम जा रहे हैं, इस वजह से ट्रैफिक की रवानी की उस पर मुतासर है। लिहाजा वो तमाम लोग जो इस रास्ते पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अभी कहने के लिए सुनते रहिए एफ एम 100 पाकिस्तान।
1: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: जी आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपकी जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं। और हम लोग बहुत ज्यादा कराची में तो बस हमारी सिर्फ एक ही एक्टिविटी है कि हम चाय पीने चले जाएं। चाय पीने हमारी एक्टिविटी भी क्या है, जाओ कहीं जाओ और खाओ और वापस मजीद मोटे हो जाओ, चलो नहीं, अपने आप को हिलाओ नहीं, जुलाओ नहीं, बस खाओ। और इसी चक्कर में जो है ना लोगों की सेहतें खराब होनी, इतनी बीमारियां हैं। और मतलब पहले होता था हम कराची के अंदर या पाकिस्तान में अमूमन ये होता, पहले हम कराची में तो ये होता है ना, क्या तुम्हारे मोबाइल छन है, यार चल यार मेरे चार छिन चुके हैं, क्या मैं तो रो रहा है बैठ के मोबाइल छन है। और इसी तरह सेहत के बारे में बात करिए तो बात करेंगे, अच्छा डायबिटीज हो गया मुझे, अरे यार मुझे तो कब से डायबिटीज है, मतलब पूरे खानदान को डायबिटीज है, तुम क्या डायबिटीज डायबिटीज रो रहे हो, तो मतलब यहाँ पे ना कोई मामूली बात समझते हैं डायबिटीज को, या हाई ब्लड प्रेशर के, हाई ब्लड प्रेशर यार सबको यार अभी छोड़ो यार समोसे खाने चलते। तो ये हमारी एक पूरी लाइक जिंदगी का जिंदगी की फिलोसफी है। खैर अब हम चलते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ते हैं। अदनान अहमद जल्दी मैसेज कर लिया, और आबिद अमी का मैसेज आया कि हमारा माशा वर्जिश समी, अगर हम एक माह से कहेंगे थोड़ी वर्जिश किया करे तो वह सामने से चेहरा उलझाते हुए कि अच्छा आप कहना चाहते हैं मैं मोटी हो गई हूं, जैसे जुमले माहौल खराब कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, खवातीन को कभी भी जिंदगी में ये नहीं बोलना चाहिए कि आप मोटी हैं या आप कमजोर हो गई, अच्छा ये नया आया है कमजोर हो गई है, बस आप बोले यार बस तुम जैसी हो मुझे अच्छी लगती हो, ये जरा डिप्लोमेसी की शादी जो है ना वो डिप्लोमेसी का काम है, आप मुंह पे नहीं बोल सकते तुम मोटी हो गई हो ये वो। इसमें शौहर को चाहिए कि वो खुद वर्कआउट करना शुरू कर दे। फिर बीवी बोलती है मेरे शौहर को क्यों स्मार्ट होने का चक्कर हो गया, मतलब क्यों ये जिम जा रहा है, फिर वो भी इंस्पायर होगी, बोली अच्छा ये ज्यादा ना स्मार्ट हो जाए। बीवी कहती है मैं भी अपना वजन कम करती हूँ। कॉम्पिटिशन वाली चीज जो होती है ना वो लोगों को ज्यादा मोटिवेट करती है कि मोटी, हर इंसान को पता होता है कि वो मोटा है, और हर इंसान को ये भी पता होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता गंजा हो रहा है, ये बातें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, इट्स ऑल्सो अबाउट फीलिंग गुड, कि आप जब आप क्या कहते हैं अपना ख्याल रखते हैं तो आप ज्यादा अच्छा फील भी करते हैं। और अदनान अहमद का मैसेज कह रहे हैं कि सच बोलूं तो रोजाना काफी वर्जिश नहीं हो पाती, काम ट्रैफिक थकान वर्जिश का प्लान शाम तक आते आते कल से पर चला जाता है, लेकिन रोजाना 20 मिनट की वॉक या स्ट्रेचिंग जरूरी कर लेता हूं। मेरा ख्याल है काफी का मतलब परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट होना चाहिए, बाकी काफी है या नहीं जिसमें बता देता है, अगर सीढ़ियां चढ़कर सांस फूल जाए तो समझ जाए कमी है। मैं कोशिश करता हूं रोजाना कुछ ना कुछ खुद को वक्त दूं, चाहे वॉक हो या घर में एक्सरसाइज, सेहत का बैंक बैलेंस है, रोजाना थोड़ा जमा करेंगे तो काम आएगा, ये अच्छा है। नमाज बहुत जरूरी है एक मुसलमान के लिए, खुशबख्ती के वो नमाज जैसा तोहफा उसके पास है जो जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ दिलो दिमाग के सुकून का बायस है। अगर नमाज ही पाबंदी के साथ और अच्छी तरीके से अदा की जाए तो ये बेस्ट वर्जिश है, किसी की वर्जिश की जरूरत ना रहे। वर्जिश तो ये बिल्कुल सही है, और सुस्त तो काहे लोग नमाज नहीं पढ़ सकते बाकायदगी से, लेकिन उसके साथ भी आपको अपनी बॉडी को एक, अगर मोमिन की बात करें, मोमिन जो है उसकी बॉडी हर वक्त तैयार रहनी चाहिए हालत जंग के लिए। अपने आप को देखें, आप हालत जंग के लिए तैयार हैं या आपके रोने शुरू हुए हैं यहाँ पे, ये मेरा ओवरवेट है, या तो ओवरवेट है, और कराची के लड़के ओवरवेट से ज्यादा अंडरवेट हैं, कब इनकी सेहतें देखी हैं, रंग इनके उड़े हुए, अजीब गरीब मखलूकात, आप मोटरसाइकिल पे तीन तीन आराम से आ जाते हैं, मतलब वो बेचारा कांस्टेबल भी कहता है कोई बात नहीं अगर तीन तीन आ रहे हैं, फिट तो हो गए ना, देखो वो तो चौथा भी बैठ सकता है, इतने तो उनके कमजोर हालात, बच्चों के भी कमजोर हालात हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं, तो चार पांच बच्चे जरूर पैदा करने, जो बच्चों की जरा सेहत है तो देखें, इसलिए अपनी सेहत का जरूर ख्याल करें, और एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें यही नहीं कि जी मेरा, मैं तो वैसे ही पतला हूं तो मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, इवन पतले लोगों को भी मूवमेंट की जरूरत है। एक सूखा इंसान भी अगर सारा दिन लेटा रहेगा एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो और भी ज्यादा उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह। तो आई होप कि आपकी जिंदगी में इनफ फिजिकल एक्टिविटी होगी, और यही हमारा आज का टॉपिक है। अगर आप इस बारे में कुछ रोशनी डालना चाहते हैं तो हमसे रابطہ करें, हमें मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे, आज समिया के इंस्टाग्राम पे, और एक थर्ड वे भी है, और बुरहानुद्दीन साहब कोई मसला नहीं है, आपका राज मेरे दिल में महफूज है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, हमें आप मैसेज करें, अपने मैसेज बॉक्स में जाए, टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर। गाना मुझे चलाना था लेकिन वो टाइम आगे हो गया, टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं, गाना हम जरूर ऐड करेंगे, मगर अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: It's 8:45 AM This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमी इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने आप ना कुछ 3 बार मौत देखा।
5: टाइम से मनु ऐसे के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जरा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
10: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
10: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
7: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
8: बंद करो ना ढक्कन।
9: स्वीप भी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
2: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
1: And
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
4: sweep be clean kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And
5: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: And

0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: and
2: Phoenix लगा और भूल जा Phoenix लगा और भूल जा
0: and
3: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: and
4: HBL Freedom Account जहां खाब वहां HBL and

इतने व्यंजन है, चलो जी मेरा मूड खराब है, बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ चाय पीने। खवातीन कहाँ जाए चाय पीने, है ना, खवातीन को भी निकल जाना चाहिए। मैं भी जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, मतलब मैं भी जा रही हूँ चाय पीने, और मैं भी जाके सिगरेट पीऊंगी वहां जाके। तो फिर वो बंदा बोलेगा है क्या हो गया मेरी बीवी को, फौरन उसका मूड सही हो जाएगा। नजीर खोजो का मैसेज पढ़ते हैं, वो कहते हैं देखें सच कहूं मैं रोजाना वर्जिश नहीं करता। ओ माय गॉड, अब क्या होगा, कभी कभी कर लेता हूँ जब टाइम मिले और मूड हो। और पुराने वक्त में लोगों को अलग से वर्जिश की जरूरत ही नहीं थी, वो सारा दिन काम करते थे, खेत घर पैदल चलना यही उनकी एक्सरसाइज थी। आजकल हम सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, वॉक नहीं। सच ये है कि आजकल मूड ही नहीं होता, थकन टेंशन और बहाने बहुत है, लेकिन जिस्म तो मशीन है ना, इसे चलाएंगे नहीं तो जंग लग जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि रोजाना ना सही हफ्ते में 3 दिन तो कर ही लूँ। तो गुजारिश यही है कि मूड का इंतजार ना करें, उठें अब 10 मिनट अपने लिए निकालें तो सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल आपने सही बात की नजीर खोसो के, पुराने जमाने में नहीं अभी भी लोग खेतों में जो काम करते हैं वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनकी खवातीन जो है ना वो उनकी उम्रें भी लंबी होती हैं। यहाँ की खवातीन जी इतनी सेहत सब कुछ अल्लाह ने दिया, फिर भी जी घुटनों में दर्द है, तो जी डायबिटीज हो गई है, रोने ही होते हैं इनके। वहाँ गाँव में मैं भावलपुर जा रही थी तो रस्ते में मैंने देखा एक खातून, एक थोड़ी एजेड खातून ना लकड़ियां उठा के जा रही है। फिर वो तो मैं थी, तो मैंने कहा मैं भी जरा देखती हूँ। मैंने ड्राइवर को कहा था गाड़ी रोको, मैंने ना लकड़ियां उठानी है और तुमने मेरी तस्वीर लेनी है कि मैं भी लकड़ियां उठा सकती हूँ। तो मैंने कहा कितनी लकड़ियां, कौन सी इतनी भारी होंगी, ये तो इतनी एज एज की खातून उठाई हुई है। लेकिन जब मैंने वो लकड़ियां उठाई तो लक पता चल गया, मैंने कहा लो इतना भारी बोझ, इतने मजे से ये चलती हुई आ रही है, खरामा खरामा। और वो शी वॉज वेरी फिट दैट वुमन, वो काफी फिट थी वैसे, और काफी मतलब 60 की तो होंगी वो। और मैंने कहा यार मतलब क्या बात है, मतलब उनको नहीं पता कि जी वेट उठाना चाहिए, उनका वेट यही रोजाना उठ रहा है, उनका वो बोन मसल मास सब कुछ बन रहा है क्योंकि वो काम कर रही है। अब जो मशीनें इतनी आ गई हैं कि वो जी वैक्यूम क्लीनर्स भी आ गए हैं, और वो हमेशा बोलते हैं कि मासियां फिट होती जा रही हैं, और जो घरेलू खवातीन हैं वो बैठ बैठ के काउच पे मोबाइल देख देख के वो मोटी हो रही हैं। अच्छा, और फिर एक चीज और निकालते हैं लोग, नहीं जाएं अब हम पैडल पैडल खेलेंगे। पैडल क्या खेलना है, अब पैडल खेलने जाओ जी वो इतना महंगा, अब उसको पहले बुक कराएं फिर पैडल खेलने। पैडल खेलने से बेहतर घर की सफाई कर लें, वैक्यूम कर लें, गली के अंदर बैडमिंटन खेल लें। नहीं जी, अब ऐसा कूल लोग अच्छी हमारा जो है ना ये वाला बूट कैंप पे हम जाएंगे और हम पैडल करने जाएंगे, और हमारे न्यूट्रिशनिस्ट है, सारी चीजें हमें चाहिए तो हम डाइट करेंगे। और बड़ी सी बॉटल भी ले रहे होते हो, भाई पानी तो पी लो, बॉटल लेके बैठे हुए लेकिन पानी नहीं पिया जा रहा। और मुझे एक बात बताएं, बंदा ग्लास में डाल के ज्यादा पानी पीता है या स्ट्रॉ से पीता रहेगा हर वक्त पानी, वजह से लोग बेहतर हो वक्त के साथ साथ। तो उनके सब शशके चाहिए, जिम चाहिए। अच्छा मेरा भी यही था, जिम जाना है तो जिम के कपड़े अलग होने चाहिए, पूरा जिम के लिए पूरा तैयार होना पड़ता है। तो आई एम लाइक इतना टाइम उसमें लगाओ तो बेहतर है कि बंदा घर में ही वो वीडियो यूट्यूब ऑन करके कर ले एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी सेहत के लिए भी, और इस चीज के लिए भी कि आपके दूसरे लोग आप बीमारियों से बचें और आप फिट रहें, खूबसूरत रहें। आप जितनी एक्सरसाइज करते हैं, आप देखें कि जो हीरोज हैं अक्षय कुमार, वो मतलब लिटरली वो ऑलमोस्ट 60 है वो भी, और वो कितने यंग लगते हैं। हीरोज आ रहे होते हैं, उनकी जो हीरोइन है उनसे कम से कम 20 साल छोटी होती है हीरोइंस, एंड वो बस फिट है। और क्योंकि उन्होंने अपना सेहत का ख्याल किया, और वो कह रहे होते हैं कि इंसान को पूरी दिन में अगर 1 घंटा भी आप अपनी बॉडी को नहीं दे सकते तो आपका दुनिया में आने का क्या फायदा है। वो उठते भी समय से बहुत सारी चीजें हैं कि आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें, खाने का ख्याल रखें, जाहिर है वो फिजिकली हीरो दिखने के लिए। लेकिन आम लाइफ में, अपनी लाइफ में भी आप हीरो की तरह दिख सकते हैं अगर थोड़ा सा फोकस करें अपनी बॉडी पे। और अगर आप जितना हीरो की तरह दिखेंगे, आप अगर सिंगल हैं तो शादी के भी चांसेस हैं, और अगर आप जॉब करें तो प्रमोशन के भी चांसेस हैं अगर आप अच्छे लगते हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके आसपास अच्छे खूबसूरत स्मार्ट लोग हों, मोटे ओवरवेट लोग ना हों। अच्छा जी, और तो खैर हमारी बातें चलती रहेंगी। अली जफर भी हमारे ऐसे अपने जाती स्टार हैं जो मतलब अभी तक एज लेस ही हैं, किन करो उनकी एज का पता ही नहीं चलता। तो इसी खुशी में सुनते हैं अली जफर का ये ट्रैक।

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद आरजे समीहा। आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी है कि आप हिलते जुलते रहते हैं या सारा दिन बैठे ही रहते हैं। कोशिश ये करें कि थोड़ी एक्टिविटी हो, क्योंकि आपकी बॉडी को अल्लाह ताला ने जो है वो हिलने जुलने के लिए बनाया है, एक जगह बिठाने के लिए नहीं बनाया। और सेहत के लिए भी जरूरी है कि आप फिजिकल एक्टिव रहें और मूड भी अच्छा रहें, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए भी जरूरी है कि हम फिजिकली एक्टिव रहें। अच्छा, और वैसे ना जब शोर नाराज होता है

ऑलराइट जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अभी हमने सुना अली जफर का और ही वाज लाइक सुपर, ही इज सो सुपर फिट लाइक ही इज अ रियली कूल पर्सन आल्सो. आई मेट हिम, तो वो बस आई एम श्योर पता नहीं क्या सीक्रेट है लोगों का, या क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या खाते हैं. मतलब यार फिट रहना, और खासतौर पर अगर आप शोबिज में, तो फिर आपको फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लॉन्ग अरसे पे हैं. और अब तो लड़कों ने इतने अपने आप को दुबला कर लिया है, इवन मैं देख रही होती हूँ बिलाल है, अहद रजमीर है, एंड ऑल दीज न्यू हीरोज आर सो थिन, दे लाइक सुपर स्लिम. वो भी नहीं कि चलो जी बॉडी, पहले एक जमाना था लोग यू नो दे वांटेड मसल एंड दे वांटेड अ गुड बॉडी, दे आर वेरी वेरी थिन. अब वो शो ऑफ वाली बॉडी का जमाना नहीं है, आपके बिल्कुल लीन आप है उसका जमाना है. और ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, खाना पीना बिल्कुल छोड़ना पड़ता है. और लेकिन खैर वो तो एक्सट्रीम उनका तो काम ही यही है, लेकिन इंसान को वैसे भी चाहिए कि वो चलता फिरता रहे और एक्टिव रहे, अपनी सेहत का ख्याल रखे. जो लोग और खासतौर पर पेरेंट्स अगर आपके फिजिकली एक्टिव होते हैं तो बच्चों पे भी असर आता है. पेरेंट्स अगर जिम गोइंग हैं या पेरेंट्स काम करने वाले हैं फिजिकल, तो वो अपने बच्चों को भी कहते हैं तुम क्यों लेटे हुए हो. अब जब माँ बाप खुद ही मोबाइल हर वक्त देखते रहेंगे, लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे, जैसे पता नहीं क्या हो गया, ऑफिस आए तो बस यूं करके लेट ही गए. हालांकि ऑफिस में आप बैठकर आए और गाड़ी भी आप, खैर थकन तो होती है जाहिर ट्रैफिक की, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो फौरन ऑफिस के बाद जिम जाते हैं. तो आपका भी ताल्लुक ऐसे लोगों से होना चाहिए या वॉक पे जाते हैं. तो आप जितनी एक्टिव रहेंगे उतनी, आपको पता है आपको लगता है कि यू हैव नो एनर्जी फॉर एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज ही आपको ज्यादा एनर्जी देती है. अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो भी जाइए और चलना शुरू कर दीजिए, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे. और इससे पहले कि जूनियर जमशेद के गाने का टाइम निकल जाए, हम चलते हैं उनकी आवाज में प्ले करते हैं. वो भी कह रहे हैं हम क्यों चलें उस राह पर, तो आप भी उस राह पे ना जाएं, आप पिछली वाली राह पे जाएं. आइए सुनते हैं.

0: 9:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रूपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए। जैज कैश है ना।
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
5: बंद करो ना ढक्कन।
6: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रूपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
8: This transmission is brought to you by
9: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
8: This program is brought to you by
10: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving, no frost, no worries.
8: And
11: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
8: And
6: Sweep Be Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
1: And HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: And

गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात ये इस बारे में कर रहे हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में फिजिकली एक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक पे जाते हैं, योगा करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं लोग करते हैं और वो हैं काबिद अमीर कहते हैं जी मुराकबा। अब मुराकबा डिफरेंट है और एक्सरसाइज बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन चलिए मुराकबा और हम लोगों से मेडिटेशन भी कह दें, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, वो आपकी बॉडी को फायदा ही पहुंचाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और तो उसके अलावा नवीद अहमद, चलो शुक्र नवीद अहमद सुन तो रहे, नवीद अहमद कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि वो जो है ना वो साइकिल भी चलाते हैं। अच्छी बात है, साइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो कह रही हूँ कि अब जिस तरह की फ्यूल प्राइसेस हो रही हैं उसमें बेहतर है कि बंदा साइकिल चलाना सीख ले, और साइकिल चलाने वाले लोग जो है ना काफी देर तक एक्टिव रहते हैं और उनको सुस्ती का ही बजाय इसके जिम में जाके, मैं तो खैर साइकिल नहीं चला पाती क्योंकि मैं गिर चुकी हूँ साइकिल से, इसके बाद मैंने नहीं सीखी, वो मेरी गलती थी, मुझे सीखना चाहिए था कि साइकिल इज वेरी गुड। और कहते हैं कि दौड़ो और साइकिल, और इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं करते तो 5 वक्त नमाज पढ़ने जिससे आपकी वर्जिश भी हो जाएगी, और आप लड़कों को तो खासतौर पर उनको बाजमान नमाज अदा करनी चाहिए, तो आप जब चल के जाते हैं तो यही देखें आपकी वर्जिश है। और इस्लाम इज अ वेरी फिजिकली एक्टिव रिलीजन, हज उमरे पे जाने के लिए भी, हज उमरे पे जो लोग गए हैं उनको पता होगा कि कितनी ज्यादा वॉक करनी पड़ती, कितना ज्यादा चलना होता है, कितना स्टेमिना चाहिए। करबला जाना है आपको तो वहां पे भी आपको बहुत चलना है। इवन दूसरे मजाहिब जो हैं उनके यहाँ भी ये है कि आपने हर जगह चल के जाना है, वहां गाड़ियां नहीं होती, और व्हील चेयर पे जो लोग जा रहे होते हैं वो भी अफसोस करते हैं, काश कि हमने अपनी सेहत का ख्याल रखा होता, हमने ज्यादा वॉक की होती और तो हम आज चल के जा रहे होते। और जो व्हील चेयर वाले हैं खुद तो अजियत में है ही, बल्कि उनसे ज्यादा अजियत वो लोग होते हैं जो व्हील चेयर चला के लेके जा रहे होते, तो खुदा के लिए दूसरों को भी इज्जत ना दें। सीनियर सिटीजन से मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज आप थोड़ी बहुत जो है वो वर्जिश डेली बेसिस पे करते रहें। अब तो खैर फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी इतनी ज्यादा एक्सरसाइजेस हैं जिसमें वो सीनियर सिटीजन को दिखा रहे होते हैं, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं वो बच्चे जो अपनी अम्मी के साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनको दिखा रहे होते हैं अम्मी आप ये करें वो करें आप ये खाएं। तो बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करना, चलते रहना। मैं बहुत सारी आई एम वेरी वेरी इरिटेटेड बाय वुमेन हाउसवाइव्स जो बस घर में रहती हैं और वो वॉक नहीं करती। यार आपको ऑफिस नहीं जाना, आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनानी है, आप सारा दिन सुबह से उठती हैं, आप घर पे बैठी होती हैं, थोड़ी बहुत तो बंदा वॉक कर ले। फिर कहती हैं बेटा मेरी दवाइयां खत्म हो गई, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो खुद से। अच्छा जो मेहनत वाले काम नहीं करने होते, इंक्लूडिंग माई ओन फैमिली, खवातीन को ना बस बेटा ये डॉक्टर ठीक नहीं है ना मुझे वो वाले डॉक्टर के पास लेके जाओ। मैं अपनी अम्मी को इतने डॉक्टर्स बांस लेके जा चुकी, डायबिटीज को पसंद नहीं आता, नहीं इसकी दवाई मुझे सूट नहीं करती, देखो मेरी शुगर देखो अभी तक कंट्रोल नहीं आ रही। मैंने जो करने वाली बातें हैं यानी कि परहेज, यानी कि आपने मतलब कि वो वॉक वो नहीं करनी। फिर वो कहती है मुझे ये वाले नहीं ये वाले जूते, अच्छा ठीक है आपके पसंद के जूते भी आ गए, नहीं मुझे भी स्मार्ट वॉच चाहिए, सारी चीजें चाहिए लेकिन इस्तेमाल उसका नहीं करना इन्होंने बिल्कुल। अब जो है ना क्या कहते हैं, नहीं बस फिर कहती मेरी शुगर कंट्रोल नहीं होती, भाई खुदा के लिए कुछ तो एफर्ट कर लो। खैर अल्लाह जानता है कि बीमार लोगों के लिए और भी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप वर्जिश नहीं करते बेड़ा गर्क ही होना है आपकी सेहत का, मैं आपको बता रही हूँ, बैठे बैठे नहीं सही हो जाता, हरकत में बरकत है। इतनी सारी मिसालें हैं कि कुदरत जो है ना वो हरकत को पसंद करती, कुदरत में मुस्तकिल हरकत होती रहती है, अगर आप बैठे हैं तो पता नहीं क्यों हैं आप। और इसके अलावा आबिद अमीर कह रहे हैं कि फैमिली पार्क में ढेर सारे लोग वर्जिश के लिए पहुंच जाते हैं, बाकी तो ग्राउंड पे चाइना कटिंग हो गई है, सड़क पर पैदल चलना चाहिए, हमारे यहाँ वॉकिंग स्पेस ही नहीं है कि आप कहीं चल पाए लिटरली। अच्छे अच्छे रोड होंगे, शारे भुट्टो में तो मोटरसाइकिल नहीं जाने दे रहे, उसने कहा किसी ने चलना है वहां पे, अच्छे अच्छे रोड है, वॉकिंग का भी आप बनाओ, वॉकिंग सिटीज बना रहे हैं लोग कि अब ज्यादा वहां पे ट्रैफिक से ज्यादा चलने की जगह होनी चाहिए लोगों के लिए। खैर और भी बातें, मोहम्मद अली अंसारी और का भी मैसेज आया, इसके अलावा आलिया अंसारी ने भी सलाम भेजा, आलिया अंसारी आप कैसे हैं, ठीक ठाक है। आई एम श्योर कि आलिया अंसारी इस मामले में भी आगे ही होंगे, वो बड़ी एक्टिव रहते होंगे है ना, कुछ लोग हैं मुझे पता चल जाता है कि अच्छे लोग हैं, वो हर चीज में कामयाब है माशाल्लाह से। और तो खैर आप लोग भी मुझे मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे, एट आज समिया इंस्टाग्राम पे। और इससे पहले कि मजीद वक्त निकल जाए, मैं चलने पे गाना लगा सजाद अली साहब, सजाद अली कौन से अजीम इंसान है, कैसे कैसे उन्हें गाने बनाए, वो कह रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा चल रहने दे, आइए सुनते हैं।

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खा वहां HBL

0: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर। सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: FM 100،
5: 31 سال FM 100، آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
10: السلام علیکم پاکستان۔

0: 9 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: किसने कहा था पैसे बचा।

0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: बैक टू बैक, ओनली म्यूजिक, नो आरजे टॉक।
6: ओनली म्यूजिक, नो आरजे टॉक।
5: दिस इज

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi, ek aisi jung jisme bahut se log na umeed ho jate hai. Magar ab mayusi umeed mein badal rahi hai. Dow Comprehensive Cancer Center, hukumat e sindh ka wo kadam jahan cancer ka ilaaj ab ek naye mayar par mumkin hai. Gamma knife advanced technology ke zariye brain tumor ka baghair surgery ke ilaaj kiya jata hai jo umuman ek hi din mein mumkin hota hai, aur iske zariye advanced stage brain tumors yani teesre aur chauthe stage ke sath multiple metastasis ka ilaaj bhi mumkin hai. Jadid tareen MR Linac machine ki badolat ab cancer jism ke kisi bhi hisse mein chup nahi sakta, dauran ilaaj ise barah raast dekha ja sakta hai aur radiation ko uske reaction ke मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है. यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है. अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
0: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना.
3: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, श्वाबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on Facebook.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
0: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो एंड शोबे जर्मनी, प्राउडली सर्विंग पाकिस्तान विद द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी फॉर 75 रिमार्केबल ईयर्स।
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365. FM 100.
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान।
6: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान।

ओके, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। तो भाई हमने ये ट्रैक को शामिल किया है, इसके पीछे कुछ वजूहात मौजूद हैं, क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जा रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि भाई अगर आपकी दोस्ती भी इतनी ही अच्छी है अपने दोस्त के साथ, अच्छा दोस्त इज नॉट कंपलसरी कि वो कोई आउटसाइडर ही आपका दोस्त हो, लेकिन वो आपका कजन भी हो सकता है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मतलब अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि भाई कुछ लोग हमारी फैमिली में हमारे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो अगर कोई ऐसा भी आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, यानी कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आज का दिन आप उसे भी विश कर सकते हैं, क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जा रहा है। और हम आपसे भी आपके फ्रेंड्स की कहानी जानना चाहेंगे कि भाई आपके आपके फ्रेंड्स के साथ कैसे दोस्ती हुई, आप लोगों का कितना पुराना साथ है, क्या आपके मुश्किल वक्त में आपके दोस्त ने आपका साथ दिया है। अब बहुत सारी वजूहात के तहत आपको पता चलता है कि भाई ये जो है ना वो बहुत अच्छा दोस्त है। अक्सर औकात हमारी दोस्ती तो चल रही होती है, लेकिन कभी इतनी गहरी दोस्ती नहीं होती। हम सोच रहे होते हैं हाँ बस एक अच्छे दोस्त है, अच्छी बातचीत है, लेकिन अक्सर औकात जब आप पर कभी कोई मुश्किल वक्त आता है तब आप रियलाइज करते हैं कि उस वक्त आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपके अच्छे दोस्त होते हैं, जो आपके साथ हर पल हर कदम खड़े होते हैं, जिनके होने से आपको बहुत एक सहारा मिलता है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं उनके साथ। और ऐसा है कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि आपके जो गुड फ्रेंड्स हैं, वो आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करते हैं, यानी कि जो मी टाइम में आप अपना टाइम अपने पसंदीदा लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं, उससे आपकी स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम होते हैं और इसी के साथ साथ हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं। सो दैट इज सो नाइस, यानी कि दोस्तों का आपके स्ट्रेस को कम करने में भी एक अदद अहम किरदार मौजूद है। तो भाई आज आप अपने दोस्त के बारे में हमें जरूर बताएं कि भाई आपका दोस्त कौन है, कौन है आपका दोस्त, कहां है आपका दोस्त, कितनी पक्की है आपकी और आपकी दोस्त की दोस्ती, क्योंकि आज हम इसी पर बात कर रहे हैं और आपसे जानेंगे कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसका क्या नाम है, हमें भी बताएं भाई और अपने दोस्त को भी बताएं। बिकॉज अक्सर औकात हमारे कुछ बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन हम कभी उनसे इजहार नहीं कर पा रहे होते कि यार तुम तो वाकई में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो। जैसे कि ये बात होती है कि एक मैं कहती हूं एप्रिसिएशन जरूर करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, किसी के भी हार्डवर्क को आपने जरूर सराहना चाहिए कि भाई तुम बहुत अच्छा काम करते हो या क्या है, या किसी की अगर आप मेहनत देख रहे हैं तो उसमें कहने में ना कोई मुजायका नहीं है। हम अक्सर औकात ये बातें इसलिए नहीं कह रहे होते कि कह देंगे ना तो वो चढ़ जाए या फिर उसके स्टाइल हो जाएंगे। अरे यार ये सब तो बहुत बात की बातें हैं, आप जरूर किसी को सराहें। उसी के साथ साथ अगर कोई आपका अच्छा दोस्त है तो उसे भी आप जरूर बताएं कि भाई तुम्हारा एक अहम किरदार है मेरी जिंदगी में, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है हमें जरूर बताएं। जब तक हम क्या करते हैं, जब तक हम आपको सुनाते हैं आतिफ असलम और हदीका कियानी की आवाज, और इसके बाद आते हैं हम वापस और करते हैं आपसे मजीद बातें।

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

Yes, everybody. So I am back और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है भाई. एक जानिब ना मेरे पास ये मैसेजेस भी शुरू हो जाते हैं. मौसम के क्या हाल हवाले हैं? बिल्कुल भाई, मौसम पर भी बात करेंगे बिकॉज एक्साइटमेंट इज ओवरलोडेड बिकॉज द सिचुएशन ऑफ KHI, नॉट ओनली KHI बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बारिश की पेशनगोईयां मौजूद हैं, जिसके जेर असर इस दफा कराची भी इंजॉय करने वाला है. और कराची वाले एक जानिब बड़े एक्साइटेड तो हैं बारिश को लेकर कि भाई चलो छुट्टी का दिन होगा, बारिश होगी, लेकिन दूसरी जानिब परेशान भी हैं क्योंकि कराची की जो सड़कों का हाल हवाल है उसे मद्देनजर रखते हुए बारिश से जरा सा खौफ आता है. और वाकई में यही दिली दुआ होती है कि जो बारिश है वो रहमत वाली हो बल्कि जहमत ना बने लोगों के लिए, क्योंकि जगह जगह पर जो है वो रोडें खुदी हुई हैं या ये सूरत हाल है. तो उसके लिए हम जो सब है ना वो आज से ज्यादा कल की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आज तो चलो जैसे तैसे इंजॉय कर लिए, कल क्या होगा जब वापस अपनी मंजिल पर जाएंगे. तो ये वाले मस्ते मसाइल तो होते हैं, लेकिन जो अपडेट्स हैं वो भी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे क्योंकि मौसम पर बात करना तो भाई लाजमी है. लेकिन भाई आज हो रही है बात बेस्ट फ्रेंड्स के हवाले से कि भाई आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप बनाया जा रहा है, तो आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किससे है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, हमें जरूर बताएं. और हमारे साथ साथ उसे भी जरूर बताएं जो कि आपका अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये बात उसे भी पता होना बहुत जरूरी है. खैर उसी के साथ साथ और भी काफी दिन मनाए जा रहे हैं. आज है पेपर बैग बैग डे. ओके, व्हाट वाज दैट, सो मेनी डेज भाई. आज इन सारे दिनों पर हम बात करेंगे. आज नेशनल इंटर्न डे भी है, अगर आपने कभी इंटर्नशिप करी हो तो आज उसका भी दिन है. नेशनल चीज केक डे भी है. ऐसे चीज केक बड़ा मजे का होता है, ये है कि वो इतना स्मूथ, इतना उसका जो टेक्सचर है वो इतना मेल्टिंग होता है कि अगर वो आपके मुंह में जाए तो वो ऐसे घुल जाता है बिल्कुल थ्री मिल्क केक की तरह. सो चीज केक इज ऑल्सो वेरी नाइस. उसी के साथ साथ आज नेशनल चिली हॉट डॉग डे भी मनाया जा रहा है. क्या आपने कभी हॉट डॉग खाया है? ऑल राइट जी, लेकिन जो आज हमारा मेन फोकस है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप के हवाले से. तो भाई आपका दोस्त कौन है, हमें जरूर बताएं अपने बेस्ट फ्रेंड को. और कैसे आपकी दोस्ती हुई, आप अपने दोस्तों को पैगाम भी देना चाहते हैं तो बिल्कुल आज आप जरूर दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए. और गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है. दर्जा हरारत कितना है इस पर भी बात करते हैं. भाई आज तो बड़ी गर्मी है कराची में, तो ये कितनी गर्मी है और इस गर्मी के पीछे क्या वजूहात हैं इस पर भी होगी बात. लेकिन उससे पहले मजा होगा दोबारा तब जब शामिल किया जाएगा एक अदद ट्रैक. तो ट्रैक तो बनता है भाई, ट्रैक को शामिल करते हैं और फिर वापस आकर मौसम पर भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ताज़तरीन सूरत हाल क्या कहती है.

ओके, सो प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत हो गई कायम, यानी कि एक अदर ट्रैक हमने आप सबको डेडिकेट कर दिया है, क्योंकि एक अदर ट्रैक तो बनता है भाई। और इसी के साथ साथ हम ये जानेंगे कि भाई आपके लंच में क्या है, क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, क्या कुछ बनाने का इरादा है या फिर कुछ मंगवाने का इरादा है, तो आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं। इसे बताने के आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर आपने सेंड कर देना है 3636 पे। तो आपके लंच में क्या मौजूद है हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम कर रहे हैं आपके लंच को जानने का इंतजार। और इसी के साथ साथ मैंने कहा चलाओ जी आपसे वेदर अपडेट भी शेयर कर देते हैं कि इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल के मुताबिक क्या ताजा तरीन खबरें मौजूद हैं। तो भाई सबसे पहले आपको इस वक्त कराची का दर्जा हरारत भी बताते चलते हैं, क्योंकि आज कराची का दर्जा हरारत थोड़ा ज्यादा है, 34 है, जबकि रियल फील्स लाइक 40 है, और कुछ इलाकों में रियल फील्स लाइक 42 भी है, क्योंकि आज गर्मी की शिद्दत जो है वो थोड़ी बरकरार है। और ये सब क्यों है सवाले से भी आप लोगों तक आगाही फराहम की जाएगी। तो कराची वालों हवा की शदीद कम दबाव की भारतीय रियासत में जो है वो पहुंच गया है, और जुम्मे की रात या हफ्ते की सुबह ये सिस्टम गुजरात पहुंच जाएगा। इसके बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कराची में हफ्ता और इतवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। इस दौरान आंधी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तेज बारिश की वजह से जो है वो सैलाबी सूरत हाल भी पॉसिबल है, बिकॉज इस दफा वाकई में कराची में जो है ना वो

बहुत तेज बारिश की पेशेंगोई मौजूद है और ये दो दिनों के लिए है। कहीं हमें सुनने को मिल रहा है कि जी सैटरडे संडे है, कहीं सैटरडे संडे और मंडे सुनने में आ रहा है, लेकिन ये है कि ये सिस्टम वाकई काफी स्ट्रांग है और कराची को हिट करने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, बिकॉज अक्सर औकात जब बहुत ज्यादा शोरा होता है तो ये भी हमें पता चल रहा होता है कि सिस्टम आया और कहीं मुड़ गया या कहीं से गुजर गया और बारिश नहीं हुई, लेकिन इस दफा काफी स्ट्रांग प्रेडिक्शंस मौजूद हैं। तो शहर में मॉनसून सिस्टम के असरात की वजह से समंदरी हवाओं में आज कमी मुतवक्के है। दर्जा हरारत मुख्तलिफ इलाकों में 35 डिग्री तक जा सकता है, जबकि महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 40 तक पहुंच सकता है, जो कि 40 इस वक्त एक्चुअली में है। और आज रात से शहर में हब्स की सूरत हाल मुतवक्के है। ओ माई गॉड, दैट इज सो बैड, क्योंकि भाई बारिश आती है तो आने से पहले अपने असरात जरूर लेकर आती है। ऐसे नहीं होता कि जी बारिश आ गई लेकिन वो आने से पहले जो अपनी जो एक साइंस है ना वो शो करना शुरू कर देती है, जो कि हम इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दर्जा हरारत भी ज्यादा है, हब्स की सूरत हाल भी है और आज रात से हब्स में मजीद इजाफा हो जाएगा क्योंकि हवाएं चलनी बंद हो जाएंगी। तो ये है फिलहाल गर्मी की ताजा तरीन सूरत हाल, जिसके मैंने कहा कि आपको आगाही जरूर फराहम करते हैं। आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है तो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, क्योंकि इस वक्त पानी पीना बहुत जरूरी है। अक्सर औकात हम गर्मी की वजह से मौसम जरा से बेहतर होता है तो पानी पीना छोड़ देते हैं, लेकिन पानी आप लोग ज्यादा से ज्यादा पिएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ट्रैक को शामिल करते हैं, फिर आते हैं वापस कुछ ही देर में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके। तो सरप्राइज क्या है, इसके लिए आपने सुना है FM 100 और साथ ही साथ एंजॉय करना है इस ट्रैक को।

Yes, everybody. So I am back. तो सोचा आपने कि आपकी नजर में सही जवाब क्या होगा. A, B, C, D. आपको चार अदद ऑप्शंस भी दिए गए थे, तो उसमें से भी आप कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं. अगर आपको लिखने में डिफिकल्टी है तो आप A, B, C, D भी चूज कर हमें बता सकते हैं. इसी के साथ साथ हमारे पास आयशा का मैसेज आया है. आयशा कहती है कि आप, मुझे लगता है कि आंसर इज सी. ओके आयशा, हमने आपका जवाब जो है वो नोट कर लिया है. एंड द गुड थिंग इज दैट कि आयशा ने बिल्कुल हमें सही तरीके से मैसेज किया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है और नाम भी लिखा है. और इसी तरह बाकी लिसनर्स से भी हम ये कहेंगे कि जब आप हमें अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें ताकि हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें अगर आपका जवाब सही हुआ तो. आयशा के साथ साथ हमारे पास जायरा का मैसेज आया है. जायरा कहती हैं, आप ही, मुझे लगता है कि इसका जवाब ए है. ओके जायरा, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है और मैसेज का सिलसिला जारी है. सो ठीक है जी, आप भी चूज करें और सोचें कि आपकी नजर में सही जवाब क्या है. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस. अनटिल एंड अनलेस जरा देखते हैं कि मजीद सूरत हाल क्या है. हमारे पास एक और मैसेज भी आया है कि बारिश का भाई सबको बड़ा शिद्दत से इंतजार है. और बिल्कुल इसी के साथ साथ आप लोग ये दुआ करें कि ये बारिश जो है वो रहमत वाली बारिश हो हम सबके लिए. अभी किस कराची वालों ने बड़ी गर्मी को एक्सपीरियंस कर लिया और उसी के साथ साथ गर्मी के साथ साथ ना सबको बड़ा इंतजार हो रहा है. लेकिन एक बात ये भी होती है कि बारिश के बाद वो जो एक हब्स की सूरत हाल हो जाती है ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है. वो मुझे लगता है गर्मी से भी ज्यादा तकलीफदेह होती है. But let's hope for the best. यानी कि नया महीना हमारे लिए जो है वो नई खुशी लेकर आ रहा है. So much excitement. नए महीने में दाखिल होने की. ओके जी, सो आप हमें मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 में. इसको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी आप इसी तरीके कार के जरिए जवाब दे सकते हैं. ए बी सी डी ऑप्शन हमने आपको दिए हैं, इसमें से आप चूज कर हमें बता सकते हैं कि आपकी नजर में सही जवाब क्या है. हम आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, हम आपके साथ मौजूद हैं. ये क्विज का सिलसिला अभी जारी है और ये क्विज डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो शॉप सिंगल रेमेडीज जर्मनी की जानिब से खेला जा रहा है. और इसी के साथ साथ हम चलते हैं कदर ट्रैक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के बाद. हम आपको नाजी हसन की आवाज सुनाते हैं और नाजी हसन की आवाज सबकी बड़ी ही फेवरेट आवाज और खूबसूरत आवाज, तो इसे शामिल करते हैं और फिर वापस आकर आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं.

Hello, hello, hello everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and aap sun rahe hain Jeenina Radio, FM 100 Pakistan ki frequency per. और आप लोगों को बताते चलें कि ये रिक्वेस्ट शो है. आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल अपने फेवरेट ट्रैक्स के लिए, और आप सबको पता भी है कि तरीकेकार बहुत ही आसान है किस तरीके से मैसेज करना है. लेकिन फॉर दोज हु आर जस्ट लिसनिंग टू द शो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो तरीकेकार बहुत ही आसान है. जस्ट टाइप खेच रहे दम लीव स्पेस, आपका मैसेज, आपका नाम, आपकी रिक्वेस्ट, 3636 पर भेजना है. चाहते हैं तो facebook.com/archer.jasmin पे भी आप भेज सकते हैं अपना फीडबैक, और साथ में जो भी रिक्वेस्ट है. ओके, सो आज हम शो पे जो है वो स्किन की इश्यूज के हवाले से डिस्कस करेंगे, और उनके ट्रीटमेंट्स भी बताएंगे आपको, और उस हवाले से एक अच्छी यू नो टिप्स होंगी. So meanwhile, we are moving on towards the first track of the show. Milte hain aapse is gaane ke baad. Kahin nahi jayega.

Okay, Zina, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड इस गाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम कॉमन स्किन इश्यूज और उसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे. सो सबसे मेन जो एक कॉमन इश्यू है स्किन का और जो मोस्टली लोग जो है आजकल और वैसे भी बहुत टाइम से जो है बहुत लंबे अरसे से फेस करते हुए आ रहे हैं और अब ज्यादा क्योंकि क्लाइमेट टोटली जो है वो चेंज हो गया है जिसकी वजह से जो है हमारी स्किन में अब इरिटेशन एक्नी इश्यूज और यू नो ऑयली स्किन ये चीजें बहुत ज्यादा जो है बढ़ रही हैं. तो मेन इशू सबसे ज्यादा इसके बारे में हम बात करेंगे विच इज एक्नी से और पिंपल्स. यानी नॉर्मली अगर एक्नी भी नहीं है तो लाइट से पिंपल्स स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं फिर वो काफी टाइम बाद जो है वो खत्म होते हैं. अच्छा अब इसकी वजह ये हो सकती है कि एक तो हार्मोनल इशू हो सकता है और दूसरा ये कि पॉल्यूशन से है एंड द थर्ड वन इज एक्सेस ऑयल. अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑयली है तो इस वजह से भी आपको एक्ने का इशू हो जाता है. ऑल्सो क्लॉग्ड पोर्स, ठीक है, आपके पोर्स जो है वो क्लॉग्ड हुए हैं उसकी वजह से भी एक्ने का इशू जो है काफी हद तक पाया जाता है. एंड अच्छा और जेनेटिक्स के हवाले से बात करें तो अगर आपको ये इशू जो है आपके फैमिली में बहुत टाइम से चलता आ रहा है और काफी सारे लोगों को ये एक्ने का इशू है तो ये आपको जेनेटिकली भी मिल जाती है. एंड साथ में अगर इसके ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात करें सो द ट्रीटमेंट इज अबाउट सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश. अब सैलिसिलिक एसिड इज बेसिकली इट्स एन इंग्रेडिएंट, ठीक है, विच यूजुअली हेल्प्स यू नो टू क्लियर द क्लॉग्ड पोर्स एंड स्किन के ब्रेकआउट्स को खत्म करता है. स्पेशली सैलिसिलिक एसिड जो है जिनकी ऑयली स्किन होती है, ठीक है, उनके लिए ये चीज ये इंग्रेडिएंट बेहतरीन तरीके से काम जो है करता है वो. अच्छा नॉर्मली आपको सैलिसिलिक एसिड जो है फेस वॉश में मिल जाता है और आपने अपनी स्किन टाइप के हवाले से या जो ब्रांड आपको सूट कर रहा है यू नो तो उस हवाले से आपने फेस वॉश जो है वो परचेज करना होता है.

0: Okay, so meanwhile, अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, फिर आपसे मजीद जो है वो चीजें डिस्कस करेंगे अबाउट स्किन इश्यूज. हमारे साथ रहेगा.
1: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
2: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से. पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर.
3: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी शोबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी. This program is brought to you by
4: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
8: FM247365.
9: Let's be friends on Facebook.
10: Sure, why not? www.facebook.com/FM247365.
11: Genie in radio.

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan. And आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर. सो हम स्किन के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं आप, और अभी हम आपको बताएंगे एक और कॉमन इश्यू के हवाले से, विच इज ब्लैक हेड्स. बहुत से लोगों को जो है ये ब्लैक हेड्स का इश्यू रहता है, यू नो, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन. एंड इसका ट्रीटमेंट जो बेसिकली बेस्ट चीजें हैं, दैट इज सैलिसिलिक एसिड एंड यू नो रेटिनॉइड्स. लेकिन रेटिनॉइड्स इफ अगर आप इसको यूज करें तो देन ये फिर आपको डॉक्टर के मशवरे से यूज करना है, या आपको खुद से यूज नहीं करना है, ठीक है. एंड जैसे सैलिसिलिक एसिड है, नियासिनमाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, यू नो इसकी एक बहुत यू नो 1% 2% इस तरीके की क्वांटिटीज होती हैं सीरम्स में जो आजकल आते हैं. अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कभी भी आप सीरम को जब आप सीरम यूज कर रहे होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, नियासिनमाइड हो गया, कोई भी हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, तो जब आप सीरम की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें इसको डायरेक्ट जो है ना वो आप अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करें, ठीक है. आप एक कॉटन लें, ठीक है, और कॉटन पे अप्लाई करके देन उसको ने आपने उसको डैप करना है. ये नहीं कि आप उसको जो है वो डायरेक्ट फॉर्म बस आपने स्किन पे लगाया, आप ऐसे नहीं करें. आप एक कॉटन लें, ठीक है, उसमें आप उसको लगा के फिर आप ऐसे डैप करें, ठीक है. उससे ही होता है, एक कंसेंट्रेशन भी कम हो जाती है, और यू नो अगर स्किन को सेंसिटिविटी भी है तो वो इतना ज्यादा स्किन को हार्म नहीं करेगा, तो ये बेहतर होता है. और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आप अपना फेस अच्छे से वॉश करके जो है अपनी डैम्प स्किन पे इस तरीके से आपने कॉटन में लेके थोड़ा सा उसको डैप करना है. और सबसे अच्छी चीज ये कि अगर आपके पास कोई अच्छा मॉइस्चराइजर है, आपकी स्किन रिलेटेड मॉइस्चराइजर, ठीक है, तो आप उसमें भी मिक्स करके लगा सकते हैं, बेस्ट है ये, तो आप ऐसे लगा सकते हैं. हाँ, ऑलरेडी अगर उसमें हाइलुरोनिक एसिड या नियासिनमाइड मौजूद है तो फिर आपको अलग से सीरम लगाने की फिर जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो मॉइस्चराइजर ही बेस्ट है. लेकिन अगर कोई प्लेन मॉइस्चराइजर आपके पास अच्छा है, जेंटल मॉइस्चराइजर है, तो उसमें आप जो हैं ये सीरम्स ऐड करके लगा सकते हैं. ओके, इसी तरीके से व्हाइट हेड्स का भी ट्रीटमेंट है. जेंटल एक्सफोलिएशन जो है वो जरूरी होता है, और मोस्टली हैवी क्रीम्स जो हैं वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो फिर पोर्स को जो है क्लॉक कर देता है. ओके, सो अब हम बात करेंगे अबाउट डार्क सर्कल्स. व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ डार्क सर्कल, क्या हो सकते हैं. सबसे पहले अपनी नींद अच्छे से पूरी करें, जो कि एक मेन चीज है इस मसले की. एंड यू नो अगर आपको किसी चीज से एलर्जीज है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और सनब्लॉक यूज करें. सनब्लॉक नॉर्मली भी यूज करना चाहिए, सिर्फ गर्मियों में भी नहीं, सर्दियों में, गर्मियों में, चाहे कोई भी मौसम हो और आपका दिन के टाइम निकलना हो रहा है, सन एक्सपोजर हो रहा है, तो सनब्लॉक लाजमी लगाएं. और यू नो अपनी स्किन के हिसाब से हर चीज आपने परचेज करनी है जो आपकी स्किन को सूट कर रही है. विटामिन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आईज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो भी आपने इस्तेमाल करने हैं. ओके, विद दैट्स अनदर वे. अभी हम जाएंगे एक और ट्रैक की तरफ, और ये हम प्ले करेंगे जरीन नूर के लिए. बारिश उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सज्जाद अली का. सो इफ यू आर लिसनिंग, दिस ट्रैक इज फॉर यू. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी।
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए। वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझबूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
5: Listeners tell us about FM 100.
6: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
7: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
5: Number one music station. FM 100.
8: Radio.

Alrighty, everyone, welcome back. हमारे पास नता का मैसेज आया है एंड शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग कॉल्ड आफरीन आफरीन. ठीक हो गया, जरूर प्ले करेंगे आपके लिए. ओके, सो स्किन कंडीशंस के हवाले से बात हो रही है एंड उसके ट्रीटमेंट के हवाले से. ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट अदर इशू विच इज एक्जिमा. ओके, सो बहुत से लोगों को एक्जिमा का इशू होता है, यू नो, एक बहुत खतरनाक किस्म की इरिटेशन एलर्जी होती है और उसमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है एंड यू नो एक फिंगर्स के बीच में जख्म होना शुरू हो जाते हैं. एंड ये मसला जब होता है तो सबसे पहले आपने करना है कि कोई एक तो एक्जिमा के जो हैं वो लोशंस आते हैं, मेडिकेटेड लोशंस होते हैं जो आपको आपका डॉक्टर जो है अच्छे से प्रिस्क्राइब करेगा, तो आपने उससे पूछ कर ही इस्तेमाल करने हैं. अच्छा, अपने हाथों को कोशिश करें कि मॉइस्चराइज रखें, प्रॉपर हाथ धो के आप उसको मॉइस्चराइज करें और थिक मॉइस्चराइजर जो है वो इस्तेमाल करें इस चीज के लिए, ये जरूरी होता है. ओके, सनबर्न के इशू के हवाले से अगर हम बात करें तो बेसिकली ये भी एक कॉमन चीज है. अक्सर लोग जो हैं वो सनब्लॉक अगर यूज करके नहीं निकलते हैं बाहर और धूप में उनका एक्सपोजर जो है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर सनबर्न का मसला हो जाता है देन दे शुड यूज एलोवेरा जेल जहां जहां बर्न हुआ है और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए. और अगर सेवियर बर्न है तो ऑब्वियसली यू शुड विजिट टू योर डॉक्टर, विच इज इम्पॉर्टेंट. सेल्फ मेडिकेशन से जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि अक्सर हम जो हैं नेट पे चीजें देख के जो है वो खुद से जो है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो डोंट डू दैट. हाँ, अगर माइल्ड है जो आप खुद से कर सकते हैं, जो आपको लगता है, लेकिन अगर वो ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आ रही कि ये हुआ क्या है और ये मतलब आपको फील हो रहा है कि ज्यादा चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, देन हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए. उसके लिए खुद सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए.

0: Genie in radio.
1: Okay, Janab, welcome back. आप सुन रहे FM 100 पाकिस्तान और चार बजने में थोड़ा ही टाइम रह गया है. रिक्वेस्ट जो है हम आप लोग की इंक्लूड बिल्कुल कर रहे हैं. स्किन के हवाले से आज हमने बात की है और आपको जो है स्किन इश्यूज के हवाले से बताया है, उनके प्लस ट्रीटमेंट के हवाले से भी बताया है. एंड हम थोड़ा इनबॉक्स से जो है वो मैसेजेस शामिल कर लेते हैं जो पेज पर हमारे पास आ रहे हैं. समी शेख, आपका सॉन्ग हमने बिल्कुल प्ले कर दिया है, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड नासिर हबीब, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. तपिश का ओएसटी रिक्वेस्ट किया है उन्होंने. चलें ठीक है, नासिर हबीब बिल्कुल प्ले कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि अभी चला दें. हाँ, क्योंकि टाइम तो हमारे पास कम रह गया है, सो जल्दी से ये प्ले करते हैं और फिर इस गाने के बाद वापस आते हैं.

Alrighty everyone, welcome back. So, Janab, show ka time jo hai, almost end pe hai. Thank you so much for all the tech centers out there. Shahid, thank you so much for your message. Aur aap log ne page pe participate kiya hamare show pe. Bahut bahut shukriya. Main inbox se naam jaldi se shamil kar leti hoon. Page pe jitne logon ne hame message kiya hai. You're welcome, Sami Sheikh. Thank you so much for your message as well. Saeed Zada, thank you so much for your message. Walaikum assalam. Main theek hoon, aap bataiye. Bahut shukriya aapke message ka. अमजद अली, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. एंड ए आर शहजादा ने भी हमें मैसेज किया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, बहुत शुक्रिया. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात करेंगे. facebook.com/rj.jasmine पे आप बिल्कुल अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं. एंड facebook.com/fm247365 इस पर भी आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ जैसमिन अंडरस्कोर अहमद JZMINE_EHMED कैपिटल लेटर्स. और पेज पर तो आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं. कोई भी टॉपिक अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में बता सकते हैं. मैंने यही पहले बताया था कि जिसका अच्छा टॉपिक होगा हम वो शो पे रखेंगे और उसके बाकायदा नाम के साथ. ठीक है, हम लोग अपना कॉपीराइट नहीं इस्तेमाल करेंगे. आप लोग जो टॉपिक्स अच्छा सजेस्ट करेगा हम बताएंगे कि इस लिसनर ने टॉपिक सजेस्ट किया हमें. सो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल. दिस हैज बीन मी जैस्मिन, आई एम सेइंग गुड बाय, टेक केयर and Allah Hafiz.

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM.

0: your location for maximum music.
1: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
2: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी श्वाबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: in the rhythm of life. Rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on. The music plays on.
1: FM 100's time check. It's 5 p.m.
2: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
6: बंद करो ना ढक्कन।
7: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और आपके टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by Phoenix Laga aur Bhul Ja,
1: Phoenix Laga aur Bhul Ja. And Sweep E Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL एंड कैडिलैक
2: नॉनस्टॉप फन करते जाओ। कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया। 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात और नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
0: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मदिया साजिद है। मैं डा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोबा जल्द में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जल्द पर सफेद धब्बे बच्चे, जवान, दरमियानी उम्र और बूढ़े मर्द और के जिस्म के किसी भी हिस्से पर मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर बन सकते हैं, जिनमें से बेशतर वजूहात काबिल इलाज है। इसलिए जरूरी और बेहतर है कि जिस्म के अगर किसी भी हिस्से पर सफेद धब्बे नमूदार हों तो मुस्तनद माहिर जल्द से बर वक्त तशखीस और इलाज के लिए मुआयना करवाया जाए।
5: ये पैगाम एडको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के तावन से नशर किया गया है।
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
8: बंद करो ना ढक्कन।
9: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
1: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja.
0: And
2: Sweep Be Clean, kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
3: HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL
0: एंड
4: कैडिलैक नॉनस्टॉप फन करते जाओ।
5: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
6: Back to back, only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is FM 100.
8: Come on.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
6: बंद करो ना ढक्कन।
7: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
8: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज प्लस डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IDFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
5: Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja.
6: And
7: Sweep B Clean, kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.

0: 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मदिया साजिद है। मैं डा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल किशोरगढ़ जल्द में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जल्द पर सफेद धब्बे बच्चे जवान दरमियानी उम्र और बूढ़े मर्द और के जिस्म के किसी भी हिस्से पर मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर बन सकते हैं, जिनमें से बेशतर वजूहात काबिल इलाज है। इसलिए जरूरी और बेहतर है कि जिस्म के अगर किसी भी हिस्से पर सफेद धब्बे नमूदार हों तो मुस्तनद माहिर जल्द से बरवक्त तशखीस और इलाज के लिए मुआयना करवाया जाए।
3: ये पैगाम एडको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के तावन से नशर किया गया है।
4: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
7: बंद करो ना ढक्कन।
8: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
9: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी परसेंट इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: किसी ने कहा था

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: क्रॉस आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त आईबीएफटी मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ एचबीएल फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां एचबीएल
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: शेयर्ड बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना

0: Marcela.
1: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
2: Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
1: And
3: Sweep E Clean, kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL. And
4: Candyland, non-stop fun karte jao.
5: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है. हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं. मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है. डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है. गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है. और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है. जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है. यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है. अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ. क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
6: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
6: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL.
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
9: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रूपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
8: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
10: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
11: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रूपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैज कैश है ना.

खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे होशियार रहें मोहतात रहें अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें हुंडी हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है याद रखें दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है हुकूमत पाकिस्तान
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
4: FM 247365
5: Let's celebrate
6: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर। सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
3: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रूपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: किसने कहा था पैसे

All right, Ray friends, welcome back to the Evisa Radio. Listening to FM 100 Pakistan, this is very much me, myself, and I, Tish Grasala, on the dial. I have some info that I need to be sharing with you people also at the same time. Up calling up my HBL Freedom account or hustle karein muft IBFT and muft checkbooks or muft online banking ki sahulat. Account khulne bhi bahut asaan hai. अकाउंट खोलने डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच और अब नया HBL मोबाइल ऐप के साथ बैंकिंग का नया अंदाज एक्सपीरियंस करें. HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. व्हाई वेट नाउ, जस्ट ओपन योर HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
3: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना

0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. This program is brought to you by...
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
7: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाएं,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں، pta.txt محفوظ ہے لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے۔ لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں، ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
9: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
10: Keep it here. We are putting the hits into high gear.
11: High gear.
10: FM 100.
11: The hits keep on coming.
12: All right, exactly. The hits keep on coming back to back. Anyways, thank you so much for joining on the dial today. I'm going to be leaving you with this track by Ali Zafar and of course Sarah Heather. Inshallah, I'll catch you guys now tomorrow. Good night and have a pleasant evening.

0: This program was brought to you by Tufaan Hai. FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है, जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
5: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
0: This transmission is brought to you by
6: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
0: This program is brought to you by
7: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: FM 100. 31 saal. FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum, Pakistan.
8: Assalamu alaikum, Pakistan.

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi, ek aisi jung jisme bahut se log na umeed ho jate hain. Magar ab mayusi umeed pe badal rahi hai. Dow Comprehensive Cancer Center, hukumat e sindh ka wo kadam jahan cancer ka ilaaj ab ek naye mayar par mumkin hai. Gamma knife advanced technology ke zariye brain tumor ka baghair surgery ke ilaaj kiya jata hai jo umuman ek hi din mein mumkin hota hai, aur iske zariye advanced stage brain tumors yani teesre aur chauthe stage ke sath multiple metastasis ka ilaaj bhi mumkin hai. Jadid tareen MR Linac machine ki badolat ab cancer jism ke kisi bhi hisse mein chup nahi sakta, dauran ilaaj ise barah raast dekha ja sakta hai aur radiation ko uske reaction ke mutabik foran adjust kiya jata hai. Yahan poore Pakistan se aaye hue logon ka ilaaj muft kiya jata hai. Ab cancer ka fauri ilaaj khwab nahi haqeeqat ban chuka hai jo hukumat e sindh aur chairman Bilawal Bhutto Zardari ke vision se mumkin hua, kyunki ye sirf ilaaj nahi ummeed hai har us chehre ki jo jeena chahta hai. Khidmat mein sabse aage sindh.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
3: 100 FM.
4: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैज कैश है ना.
3: 100 FM.
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: 100 FM.
5: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
6: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेसिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
5: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
0: This program is brought to you by
6: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hoon. Aise online apps aur platforms se ishtinaab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke sath le jane ke liye karte hain. ये आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार,

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
0: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM।
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM।
4: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
6: This program is brought to you by
7: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
8: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hoon. ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों के इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए कर। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
11: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے،
12: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
13: ہماری ذمہ داری ہے،
14: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 24/7 365 31 years of memory milestone and moments FM 100 Pakistan it's a legacy.
15: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.
6: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
7: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
16: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. صرف اپنی ہی نہیں بلکہ سارے گھرانے کی زندگی بدلے گی، آنے والی نسلیں سنوارے گی۔ ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے۔ لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
9: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
17: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: us on facebook.com/fm247365
15: fm247365

Hello, my check. 1, 2, 3. Assalamualaikum and Assalamualaikum, Pakistan. सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब. क्या हाल है, कैसे मिजाज, कैसी तबीयत है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे. और जनाब मेरा और आपका साथ रात 9 बजे से लेकर और 11 बजे. तो आज थोड़ी जरा ब्रेक ज्यादा, 9:20 यानी 20 मिनट के बाद. पहले जनाब ये सिलसिले तो चलते रहते हैं. अगर आपका दिल चाह रहा है मुझे मैसेज करने का, बहुत सिंपल तरीका, KHI स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड कर देंगे 3636 में. अच्छा जनाब, थर्सडे और थर्सडे वाले दिन नए पुराने सारे गाने जो है ना, मैं मिक्स करके आपको सुना देता हूँ. इंग्लिश भी होंगे, अरबिक भी होंगे, सब. ड्राइव कर रहे हैं इत्मीनान सुकून के साथ, घर में बैठे हैं तो भी यही, घर के माहौल को अच्छा रखें. कोशिश करें कि जरा आपके आने से लोग खुश हों, ना कि परेशान हो जाए. ओहो हिटलर आ गया, होता है बाज लोग ऐसे होते हैं भाई, नॉमिनेशन चाहिए उनको, कोई इनको इज्जत करे ना करे, वो कह रहे नहीं जबरदस्ती मेरी करो इज्जत. ऐसे नहीं, प्यार से घर के माहौल को बहुत अच्छा रखें. परेशानियां आ रही हैं तो कोई बात नहीं, बच्चों पर परेशानियां ना निकालें. अच्छा जनाब अगस्त भी आने वाला है दोस्तों, बस थोड़े से दिनों में, 2-4. आज क्या डेट है वैसे? यार दिन कितनी स्पीड से गुजर रहे हैं. बस एक दिन के बाद जो है अगस्त का महीना भी शुरू हो जाएगा और फिर नेशनल सॉन्ग्स, वो तो मैंने आपको फिर रोज जो है ना सुनाने, बल्कि आज से शुरू करते हैं, आगाज करते हैं नेशनल सॉन्ग से.

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100। क्या बात है जनाब, जबरदस्त ये ट्रैक और दोस्ती वीडियो भी कमाल थी इसकी। तो जनाब नेशनल सॉन्ग्स जो है ना, बस अब आप रेडी हो जाएं, मैंने ये सुनाते रहने आपको। अच्छा जनाब, सबसे पहले सुंदर जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सुंदर जी हमें सुन रही है, सुंदर जी आप छाई हुई हैं, क्या कहने। इसके अलावा बिलावल भाई जो है ना गिजरी से, वो हमें मैसेज करें, आज भाई आपको, सुंबल जी को, कादिर भाई को और तमाम लिसनर को अस्सलाम वालेकुम सलाम। और सर उम्मीद है कि आप फिट फाट होंगे, दुआएं चाहिए सर आपकी, दुआएं सलाम। कैसे हैं? बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जरी नूर भी आ गई, जरी नूर थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। और संजीदा भी आ गई हैं, वालेकुम सलाम, इतनी सारी दुआएं, वेलकम। और कह रही है बहुत प्यारी बात की आपने, घर का माहौल दोस्ताना होना चाहिए, हिटलर की आमद का पता। हाँ कहीं हिटलर ना हो, बिल्कुल सही, ठीक हो गया, पहला गाना पसंद आ गया भाई, खुश हैं आज। कह रही भाई आप आ गए, आए हाय, आप लोग आ जाते तो मुझे और खुशी होती भाई। कल बहुत कामयाब शो रहा, आखिर तक दिलचस्पी रही, पक्की बात है, उम्मीद करते हैं आज भी दिलचस्पी रहे। और हमारी प्यारी सी मिसेस फारूक तशरीफ ले आ चुकी हैं। मिसेस फारूक कैसी हैं? इंग्लिश गाने हैं आज आपके लिए खास तौर पे, और इतने अच्छे। वैसे हर गाने पे इनका भी जो है ना रिव्यू आता रहता है कि भाई ये गाना कैसा है और वो कैसा है, कमाल। और गया सुद्दीन बलबन मुल्तान से हमें सुन रहे हैं, वालेकुम सलाम, पूरी टीम को सलाम कह दिया इन्होंने। गयास कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, और वो है कैसे,

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye. Cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi. Ek aisi jung जिसमें बहुत से लोग ना उम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नॉइस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: 100 FM।
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
4: 100 FM।
6: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
7: This transmission is brought to you by
8: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
7: This program is brought to you by
9: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
7: Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365.
11: Active. Yummy.
12: Adorable.
13: Seven.
14: Say that I got a crush on you.

जनाब, वेलकम बैक. सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर. अच्छा भाई, रमजान पठान कैसे मिजाज है तुम्हारे अयाज भाई? आपको, बिलावल को और तमाम लिसनर को अस्सलाम वालेकुम. अयाज भाई, हमारी तरफ से बिलावल के नाम अच्छा सा गाना डेडिकेट. ठीक हो गया रमजान भाई? बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, रानी हुसैन सुन रहे. रानी जी कैसी हैं आप? रानी हुसैन कैसी तबीयत है? बिलाल भी नजर आ रहे मुझे. बिलाल हमारे प्यारे से इंजीनियर, कैसे हो? अच्छा जनाब, रानी हुसैन कह रही है कि आपके आने से माहौल अच्छा हो गया. अच्छा जी, हमारी फैमिली, स्वीट अयाज भाई, स्वीट बातें. अरे रानी जी, आप इस तरह कहती हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. मोहब्बत है, प्यार है आपका. और जनाब नौरीन तौसीफ फैसलाबाद से, मिजाज मेरे ठीक है. आप बताइए नौरीन, कैसी हैं आप? कल का शो बेहतरीन था, आज भी शुरुआत बहुत खूबसूरत गुफ्तगू से की. लफ्जों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करते हैं. बेहतरीन तरबियत नजर आती है. सलाम है आपके वालदैन को, इसमें तो कोई शक की बात नहीं. बेचारे वो सिखाते रह गए, लेकिन फिर भी मैं कहीं कहीं कन्नी खा जाता हूँ. मेरा मतलब है कि कहीं इधर उधर हो जाता हूँ, लेकिन आप ऐसा समझती हैं, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा प्यारी बहना संजीदा, जरीन, नसरीन, मुश्क और महानूर को खासतौर पर सलाम दे दिया है. गाने भी बिल्कुल मैं डेडिकेट कर दूंगा, फिकर मा कावा. अच्छा जनाब, मैसेज काफी सारे आ गए भाई. और मिसेस फारूक, आप भी खुश रहें. इतनी सारी दुआएं देती हैं और खास तौर पर ये भी कहती हैं खुश रहें. गाने पसंद करी हैं संजीदा जी. कह रही मैं प्यारी नहीं हूं, मिसेस फारूक प्यारी हैं. हम तो पढ़े हैं राव में. अरे क्या कहने, क्या कहने, इसी बात पर ये ट्रैक आपको डेडिकेट कर देता हूं.

कंप्रोमाइजर नावल के बैक सुन रहे एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं जनाब। बिल्कुल मैसेज मैं शामिल करूंगा, लेकिन असगर साहब ने शिकायत कर दी संजीदा जी आपसे कि कह रहे भाई को भूल गया। संजीदा जी देखें आप भूला ना करें आप। अच्छा और वो थोड़ी सी वो भी हो रही है परेशान कि भाई मेरी बात का माइंड तो निकल कर लिया मिसेज फारूक ने। नहीं नहीं वो वैसे पूछ रही है यार मुझे इतना हसीन तो क्या पता, जब हसीन होता है वो अपने बारे में ऐसी सोचता। अच्छा जनाब और मिसेज फारूक कह रही है बहुत आला तरफ, नो डाउट आला तरफ इंसान है, इसमें कोई शक की बात। अच्छा जनाब तो गाना डेडिकेट करना है हमने सुंदर जी को, और ये गाना जो है उनको हम डेडिकेट कर देते हैं। अच्छा जनाब मैसेज करने का तरीका बता दूं, KHI स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर।

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जनाब वेलकम बैक टू एफएम 100 और आंखों के सागर. क्या बात है, क्या जबरदस्त ट्रैक. शफकत भाई याद आ गए मुझे. अच्छा जनाब, और सुंदर जी बहुत शुक्रिया गाना पसंद करने का, थैंक यू. और मिसेस फारूक क्या कहने आपके, कह रहे हैं कि भाई दोस्तों की बातों का माइंड नहीं करते, करती शरारतें अच्छी लगती हैं शो में. चले जनाब, तो संजीदा जी आपकी किसी बात को उन्होंने माइंड नहीं किया. और कहने भाई, अरे असगर भाई बहन भाइयों को भूलती नहीं है, सलामत रहें भाई. असगर साहब आपका मैसेज पहुंचा दिया और जवाब भी आ गया. अच्छा जनाब, और मिसेज गफ्फार सलाम दे रही हैं, नाइस शो भी कह रही हैं. मिसेज गफ्फार वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं. और रानी जी भी मुझे मुस्तकिल मैसेज कर रही. रानी मैं माफ़ करना चाहता हूँ, आपके मैसेज जरा मैं नहीं पढ़ पाता. कहने में बा अदब बा नसीब और बे अदब बद नसीब. हाँ अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात. डिलीट भी कर दिया मैसेज, क्या था उसमें, डिलीट क्यों कर दिया. अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम किंग, क्या हाल है, आज देर से ज्वाइन किया, कोई ऐसी बात नहीं, ऑसम शो किंग, एंजॉय कर रही हूँ किंग. कल का शो शानदार था बेटा, आज की फिक्र करो, कल तो हो गया, कल होना था वो हो गया. एजाज बक्सी कह रहे हैं, एजाज भाई आप को और बिलाल, बिलावल, जनी, नूर और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. और बिलावल कह रहे हैं कि सर मैं टेंशन नहीं लेता. बाकी सर जहां आप होंगे, आप कहां टेंशन, दूसरों ने लेनी है टेंशन. कहां आ गया ये आदमी. कह रहे हैं कि भाई टेंशन हर जगह पर है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहता हूं. भाई अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन. अच्छा जी सिद्रा आ गई, सिद्रा जी कह रही है अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप. अच्छा जी कराची से मैसेज किया है, आपको सुन रही हूं, बहुत प्यारी आवाज है और माशाल्लाह अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन. सिद्रा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. अच्छा जनाब टाइम क्या हो गया ये बताना है, और दो मिनट की ब्रेक है.
3: FM 100's टाइम चेक, इट्स 10 PM. This program was brought to you by
4: Hyrecan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
5: Shared bundles, वो भी discount पर. Subscribe करना तो बनता है, तो बस अभी Jazz Cash app से Jazz V5 Fantastic bundle लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: 100 FM.
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
3: 100 FM.
7: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
3: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.
9: FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
9: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
10: एक्टिव यम्मी
11: डॉल्फिन जबरदस्त
10: है प्यार, तो सुनो यार.

Alright, जनाब, welcome back to Sunray FM 100 और साथ ही साथ messages भी. भाई बिलावल भाई, मुझे पता चल जाता है आपके फेवरेट गाने कौन कौन से होते हैं. फुल टाइम गाना, एनर्जेटिक गाने पसंद है बिलावल भाई को. अच्छा जनाब, महाजबीन आ गई हैं इस्लामाबाद से. महाजबीन, क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, खैरियत से है? हमारी बहुत सारी दुआएं जो है ना महाजबीन के साथ रहती हैं कि वो फिट रहे, सेहतमंद रहे. इसके अलावा बिलावल के रमजान पठान और एजाज साहब का, इनको भी सलाम. अच्छा जी, इसके अलावा अयाज भाई, कर्जा नहीं लेना, आपकी और उम्मे रुबाब की बातें अच्छी लग रही हैं अम्मी को, खास कर उर्दू और मालूम कहना अच्छा लगता है. अच्छा जी, हाँ ये बात है, वैसे मालूम मुझे भी अच्छा लगता है. अच्छा जनाब, और मिसेस फारूक कह रही है 10 इतनी जल्दी बज गए. ये यार वैसे वाकई में एफएम 100 में आता हूँ, पता नहीं टाइम को पर लग जाते हैं, क्या हो जाता है इतनी स्पीड के साथ. तो कोई रोको यार. अयाज अहमद, अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. जाहिद भाई, वालेकुम अस्सलाम. और ये एक और जबरदस्त ट्रैक शामिल करने जा रहा हूँ. आय हाय,

ओए होए, चांद मेरे मखना, क्या बात है इस ट्रैक की भी, जब सुने अच्छा लगता है। इंग्लिश सॉन्ग अच्छा था पर समझ में कुछ नहीं आया। आपको रानी जी समझ कर मैं मतलब समझ में आ भी जाए तो क्या करना है, कुछ थीसिस देने हैं, कोई एग्जाम देना है, एंजॉय करें। मैं क्या दो चार ठुमके लगा लिया, एक्सरसाइज हो जाएगी। रानी जी खुश रहा करें, बस समझा समझाने की बात जो है ना वो ना किया करें। अभी तो दो चार गाने और ऐसे हैं जो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन बस आपने एंजॉय करना है। अच्छा जनाब जबरदस्त ये ट्रैक, जरा बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ चला गया, ये रहा। अच्छा जी, यूके से नादिया मलिक आ गई हैं, सबको सलाम कह रही हैं। वालेकुम सलाम नादिया मलिक, सबकी जानिब से। और एक बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि वो कोई चिकन सैलेड है उसकी रेसिपी बताने वाले। तो भाई नादिया मलिक जल्दी से बस एक दो मिनट का क्लिप जाना अपनी आवाज में, उस रेसिपी का वो बना के मुझे सेंड कर दो। मैं अभी बस यार दिल कर रहा है यार इस टाइम पे जो है ना ये वाली सैलेड खाने को दिल कर रहा है, साथ में एप्पल जूस हो, एप्पल वो असली वाला एप्पल, वो वाला ना समझना। अलीजे आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, कैसे हैं? अच्छा आप अलीजा हो, अलीजे हो, क्या हो? अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, कैसे हैं? और अयाज भाई मैं भी आ गई, आपने कल कहा था कि रोज मैसेज आना चाहिए तो आज मैंने मैसेज कर दिया। अच्छा आ गई हो अलीजे, अलीजे है या अलीजा? अलीजा मैं सही बोल रहा हूँ तो अलीजा जी वेलकम कहते हैं आप। चलो भाई नए नए जो है ना लिसनर्स भी आ रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जी संजीदा कह रही क्या बात है चंद मेरे मखना की, दिल करता है पराठे पर लगा है जज्बाती होगी संजीदा, नहीं गाना अच्छा चंद मेरे मखना। और कह रही कितना दिमाग है, अरे नहीं भाई मेरे दिमाग, मेरा दिमाग ही नहीं तो खाएंगी क्या, दिमाग होता तो मैं यहां होता। आज मिसेस फारूक खुश रहे, आप खुश रहे मिसेस फारूक, बैक टू बैक सुपर सॉन्ग लगा रहे हैं। चले जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक और सुपर गाना ये भी मुझे क्यू शीट में मैंने रख लिया आज। हाय हाय

0: yummy.
1: जनाब वेलकम बैक। और संजीदा कहनी अच्छी रेसिपी तुम्हें बड़ी याद रहेगी, इतनी स्पीड से उसने बताई, हराम है जो किसी को याद हुई होगी। लेकिन चलो खैर की बात, ऑन एयर तारीफ करनी चाहिए। वैसे मुझे आइटम जो थे वो बड़े अच्छे लग रहे थे, जो जो चीजें थी ना बहुत आला। अच्छा जनाब, और हमें मैसेज कर रही हैं बीनेश। बीनेश जी कैसी हैं आप, इतनी तारीफें, इतना प्यार आपके मैसेज में। ओए होए होए होए बीनेश जी कंट्रोल, लव यू टू नहीं बोल सकता, बुरा बुरा लगेगा, लोग बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन बहरहाल बीनेश बहुत शुक्रिया, बस आपकी मोहब्बतें प्यार है। अच्छा जनाब, एक और ट्रैक अच्छा लग गया भाई आजकल में, थोड़ा सा फिर जरा अगर डांस वांस का मूड है तो ये लें फिर। लो जी फिर हो जाए।

वंजना वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 क्या बात है, बड़ा एनर्जेटिक सॉन्ग। और नादिर जी कह रही है कि उनका आजकल बड़ा फेवरेट है और डांस भी हो रहा है भाई इस पे। वाह वाह वाह वाह, देखें बदना जाना अपडेट होना चाहिए। और मेरा भी बड़ा फेवरेट है, और ये म्यूजिक इसमें कोई समझने सुनने की बात नहीं थी, बस इंजॉय करें। अच्छा जी, और रानी जी कह रही है मेरा सलाम दुआएं, और इतनी मोहब्बत से जो है सलाम दुआ दे दी है रानी जी ने, रानी हुसैन ने, नादिया मलिक आपको, तो आपने जो है ना वालेकुम सलाम कहना है उनको। कहां से लाते हैं सो, अरे ये हिट है आजकल भाई, हिट है ये गाना। मैं चाहता हूँ मेरे जो लिसनर जो है ना, जो मुझे सुनते हैं, वो भी अपडेट रहे। सारे गाने जो है ना बस मैं ले आता हूँ कहीं ना कहीं से। और संजीदा ने जो वाकई भाई लगता है रिकॉर्ड कर ली है रेसिपी, बिलावल भाई ने भी कह रहे हैं कि नादिया जी की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड कर ली। बस यार अच्छी लग रही है मुझे जो इसमें आपने वो चीजें बताई है ना, मजे की लगनी हो। संजीदा आप जरा बना के जरा और टेस्ट करके मुझे बताइएगा कैसी है, और जितने लोगों ने सुना है जिनको याद है। अच्छा जी, मिसेस फारूक क्या कह रही है भैया, क्या बात है कह रही है, वाह क्या बात है, मजा अच्छी भी हो बाबा, मजे के पैसे हैं सारे। जबरदस्त सॉन्ग चले जनाब, संजीदा जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई अब जरा एक कोई रिवायती गाना भी शामिल करते हैं, और शामिल करते हैं अली हैदर भाई को।

0: やめ
1: Shared bundles, वो भी discount पर. Subscribe करना तो बनता है. तो बस अभी Jazz Cash app से Jazz B5 Fantastic bundle लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन discount. अपने favorite bundles पर बड़े discounts के लिए Jazz Cash है ना?
2: 100 FM.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
2: 100 FM.
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
5: This transmission is brought to you by
6: Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM247365.
0: Active,
9: yummy,
0: adorable, zabardast.
10: Babe, I've got a crush on you.
0: Kya pyaas to suno yaar.

0: क्या बात है, वो कहते ना कि दिल से दिल को राह होती है। अभी मैंने अली हैदर भाई का गाना लगाया और अली हैदर भाई अमेरिका में होते हैं, और अभी मैंने गाना वो चल रहा था और अली भाई का मैसेज भी आ गया और उनकी एक नई एल्बम आ गई है दिल रंगीन, और उसके भी गाने जो है वो कह रहे भाई वो भी जो है ना वो आने वाले हमारे पास, बल्कि है मेरे ख्याल से थोड़े दिनों में मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। लेकिन क्या बात करती है, मैंने कहा भाई अभी मैंने आपका ये गाना दिल वाले जो है वो प्ले किया है, इस पे उन्होंने क्या कहा जरा चेक करें आप।
1: जी मेरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल वाले और चांद सा मुखड़ा, ये खासतौर पे दिल वाले तो मेरे ख्याल में जितना आपके पास चलता है इतना शायद मेरे अपने शोज में भी नहीं चलता।
0: मोहब्बत है अली भाई, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, और नो डाउट जैसे सारे गाने मेरे बड़े फेवरेट, और क्यू शीट में मैं कोशिश करता हूँ कि इनको रखूं। अच्छा जी, बिलावल कह रहे सर ये तो फुल परफॉर्मेंस बम बम गाना जो है वाकई फुल परफॉर्मेंस वाला तो है, इसमें तो कोई शक की बात। अच्छा जब परफॉर्मेंस वाली बात कर रहे हो ना यार, ये अरेबिक भी, ये वाला ट्रैक भी आजकल मुझे बड़ा पसंद है और गाड़ी में मैंने बार बार इसको सुनता रहता हूँ, जरा चेक करें आप दोबारा।

0: Yummy.
1: Dollar boots. Summer. Say I've got a
2: crush on you. Che piasto sono gli altri. Che piasto sono gli altri.
3: जनाब वेलकम बैक. और रानी जी आपको जो है ना नादिया जी ने रिप्लाई कर दिया और वो कैसे कर दिया जरा चेक करें आप.
4: वालेकुम अस्सलाम रानी बाजी.
3: ये इनकी फॉल्ट नहीं है, हमारी असल में क्लास फेलो रह चुकी है और इस दौर के जितने भी हमारे स्टूडेंट और जितने थे ना उनकी यही तबीयत रहती है. तो रानी जी आपने माइंड नहीं करना, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है हम में. अच्छा जनाब, जरी जी के बाद मिसेस फारूक को गाने बहुत पसंद आ गए, थम्स अप के भी मैसेज आ गए. वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. अच्छा जनाब, फरीदा बुरहानुद्दीन भी हमें मैसेज करी, जरा मैं उनका मैसेज शामिल करता हूँ. सलाम बेटा, मैं फरीदा बुरहानुद्दीन हूँ, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है, मुझे भी कोई सॉन्ग समझ में नहीं है. आंटी समझ के करना क्या है आपने, बस इंजॉय करें आप, छोड़े आप समझने को. ये भी एक मसला हो गया पाकिस्तान में, गाना समझना. अब क्यों समझना है भाई, इंजॉय करो यार, म्यूजिक भी बड़ी आला चीज होती है. अच्छा जी, अली भाई को सलाम. अली भाई की जानिब से मैं वालेकुम सलाम कहता हूँ. अली हैदर भाई दी ग्रेट, पाकिस्तान आते हैं तो जरूर मैं अपने शो में उनको बुलवाता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ, तो और उनकी मोहब्बत है कि वो आ भी जाते. देखो एक बात है, स्टार है वाकई में, आज भी स्टार है वो बंदा. अच्छा जनाब, गाने पसंद कर रही हैं, ये वाला म्यूजिक भी पसंद आ गया. वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. अच्छा जी, एक जरा स्लो नंबर शामिल करता हूँ, बड़ी देर से मैं फास्ट ट्रैक आपको सुना रहा हूँ, जरा एक ट्रैक जरा चेक करें आप.

हाँ जना, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100। टाइम स्पीड से गुजरता चला जा रहा है, दौड़ता चला जा रहा है। रुक दीना भैया, और कहते हैं ना कि अच्छा टाइम जो है वो तेजी से गुजरता है, और ऐसा ही होता है। FM 100 जब भी मैं आता हूँ, ऐसी मजे मजे के आपके मैसेजेस और एनर्जेटिक सॉन्ग्स और कुछ जरा इस तरह के रोमांटिक सॉन्ग भी, हर तरह का माहौल है भाई, फुल टाइम मिक्स मसाला। और फिर उसके बाद बाहर से भी जब लोग सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में तो सुनते हैं, वो तो नो डाउट अच्छी बात है ही, लेकिन बाहर पर जो लोग सुन रहे हैं, जैसे नादिया मलिक हैं, यूके में होती हैं, और वो वहां से इस टाइम शाम हो रही है उनकी, तो जरा डिनर विनर बना रही होती है, और साथ में एफएम 100 भी लगा हुआ, क्या बात है। और प्रोग्राम करो, और आज इत्तेफाक देखें, अली हैदर भाई की भी जो है ना वो मैसेजेस आ रहे हैं, और वो किससे मुझे कुछ जरा पुराने में सुना रहे हैं। आए हमारी प्यारी सी भाभी, सभी का भाभी को सलाम कहेंगे आप। बहुत ही स्वीट, बहुत ही जबरदस्त कपल, माशाल्लाह, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे भाई, इनके लिए बहुत सारी दुआएं भाई। अच्छा जनाब, संजीदा क्या कह रही है, आंटी ना बोलो लड़की को, ना आंटी मैंने कब कहा है, क्या बात है यार, इस सॉन्ग की शायरी जबरदस्त है। अच्छा जी, हाँ बस ऐसे कम कम कोशिश करता हूँ, जरा दो दो तीन तीन मिनट के गाने, ज्यादा लंबे चौड़े गाने भी जरा बोर कर देते हैं, बस दो से तीन मिनट का गाना। अच्छा जनाब, और सदा खुश रहे नादिया। नादिया जी, आपको जनाब रानी जी ने रिप्लाई कर दिया, बहुत सारी दुआएं देनी है आप। अली भाई के मैसेज आ रहे हैं, अली हैदर भाई के, तो दिल चाह रहा है यार आज उनको हमारे शो में होना चाहिए था। चलें जनाब, उनसे मैं पूछूंगा कब आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते, जरा देसी टच एक और शामिल करते हैं।

0: Yummy.
1: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
2: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेदरेस्त। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ हैं, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एल वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

है क्या बात है जना, जबरदस्त ट्रैक संजीदा जी, बहुत शुक्रिया। सुकून से कहती मैं शो सुनती हूँ आपकी वजह से, माहौल पुरसकून रखती हूँ। आए हाय, वैसे भी पुरसकून रहा करो चंदा, वैसे ही सुकून से रहा करो। और मिसेस फारूक के मैसेज तो पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जनाब रानी जी क्या कह रही है, मौसम पर भी सोबतों का असर हो गया है, बेईमान हो गया। अच्छा जी, बेईमानी तो हर जगह चल रही है, कश्मीर में अभी इलेक्शन हुआ इसमें भी बड़ी सुना मैंने। खैर छोड़ो इस बात को, इस सॉन्ग को सुनते हैं।

जनाब टाइम स्पीड से गुजरता चला जा रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं भाई सबको, सदा खुश रहे। फारूक बहुत शुक्रिया, संजीदा आपका शुक्रिया। इसके अलावा जनाब जितने लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सुपर सॉन्ग दिल खुश हो गया है, जनी नूर आपका भी बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक और तरह थोड़ा सा स्लो ट्रैक मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद जरा एक फास्ट ट्रैक सेंड करेंगे।

अच्छा जी, नादिया जी ने भी मीठे मीठे बना लिए हैं और साथ में वो अच्छा असर का टाइम हो गया, वो असर पड़ने जा रही है। नादिया जी खैरियत से जाए, हमारे भी शो का टाइम अब खत्म हो, हम भी अब टाटा बाय बाय करेंगे। और बिलावल भाई कह रहे सर एनर्जेटिक शो, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। और रानी जी की तो पूरी फैमिली ने मैसेज कर दिया है, नाम मैं भूल जाता हूँ, वानिया मुझे याद रह गया, हारिस था मेरा ख्याल से, क्या वारिस था, जो भी भाई आप सबका बहुत शुक्रिया। और पूरी रानी जी की जो फैमिली है जो मुझे इतने प्यार से सुनती है, और फेवरेट गाना उनका लगा दिया मैंने, पल पल जीना यहाँ, ये उन सबका बड़ा फेवरेट गाना, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो इंशाल्लाह जनाब अब देखते कल की क्या सूरत हाल बनती है। अयाज अहमद को दे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, रब राखा, खुदा पामाना।

0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365
3: ओ मुंडे।

Assalamualaikum, assalamualaikum Pakistan. मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA सोने। स्लीवलेस नाइट में कहूंगा आपको खुश आमदीद। आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक, और आज 3 बजे तक सजाएंगे महफिल कुछ बज़्म गजल की, बज़्म शायरी की, बात करेंगे कुछ दिल की, और दिल की जब बात आती है तो मोहब्बत की बात आती है। मोहब्बत भरी बातें करेंगे भाई आज, प्यार की, मोहब्बत की। बस कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, अपनी पसंद की जो इंतखाब हैं वो शो में आप शामिल कर सकते हैं। दिल की बात आप शो में कर सकते हैं आज। अच्छा, सुनाएंगे आपको गजल भी और गजल नुमा गीत भी, आज मिक्स होगा सिलसिला। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी कीजिए तो भी मेहरबानी होगी। अच्छा जनाब, इससे पहले कि आप लोगों को वार्म अप करूं, एक गजल से आगाज करूं, तो अब बात कुछ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने की बज़्म शायरी, बज़्म गजल, दिल का मामला, तो हम बात करेंगे मोहब्बत की। ये भी कहा, एक सवाल ज़हन में भी आया मेरे, वो ये आया है कि मोहब्बत में गिले शिकवे क्यों होते हैं। अक्सर आप देखते हैं जो भी आपसे मोहब्बत करता है या आप भी जिससे मोहब्बत करते हैं, अरे बहुत ही गिले शिकवे करते हैं भाई हम, वजह क्या है। अच्छा, इसकी वजह बड़ी मजेदार किस्म की है, लेकिन बताइएगा, बहुत से हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जो कि शादीशुदा हैं, उनको इस बात का एहसास कम होता है। महबूब और महबूबा को इस बात का एहसास फौरन होता है, लेकिन इन दोनों मामलात में, इन गिले और शिकवों में मोहब्बत छुपी होती है, होती मोहब्बत ही है। शोर, देर से घर आया, क्यों देर से घर आए, कहां थे, फोन क्यों नहीं किया। अच्छा, कड़वी बातें लगती हैं उसकी, किसी खाला से बात कर रहे होगे, ये बात बुरी लगती है, मगर ये एक मोहब्बत का जज्बा होता है, फिक्र होती है। तुमने उससे बात की हुई, तुमने इससे बात क्यों की, ये महबूब और महबूबा के हवाले से बोल रहा हूं। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, तुम्हारा मैसेज क्यों नहीं आया, कहां थे, ये भी गिले और शिकवे जो है मोहब्बत की निशानियों में से हैं। जज्बे हैं ये, जिंदगी भर याद आते हैं। फिर पहले तो तुम मेरी बहुत फिक्र करते थे, अब क्या हो गया। हाय अल्लाह जी, क्या बात है। मोहब्बत का चांद से भी बड़ा ताल्लुक है और चांद का रात से ताल्लुक है, यानी कि मोहब्बत, चांद और रात, ये तीनों हो साथ तो फिर क्या बात है। रात हो, तन्हाई हो, और सिर्फ तेरी याद हो, चले शो का आगाज करते हैं। एक अदद आपको इंतखाब सुनाते हैं, शाहिद कबीर साहब ने लिखा है ये, और कहते हैं कि बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है। बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम, आपके दम से तो है दुनिया का भरम कायम,
آپ جب ہیں تو زمانے کی ضرورت کیا ہے، آپ جب ہیں تو زمانے کی ضرورت کیا ہے، تیرا کوچا تیرا در تیری گلی کافی ہے، تیرا کوچا تیرا در تیری گلی کافی ہے، بے ٹھکانوں کو ٹھکانے کی ضرورت کیا ہے، دل سے ملنے کی تمنا ہی نہیں جب دل میں، دل سے ملنے کی تمنا ہی نہیں جب دل میں، ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک بہت ہی زبردست غزل کی جانب، شو میں پہلی مرتبہ سنیں گے۔ شو غزل کا عنوان ہے انتظار صبا، سماعت فرمائیے۔

वेलकम बैक कहेंगे सुनो, इश्क तो लाजवाब होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गीत भी पसंद आया होगा। अच्छा जनाब, फरमाइश आज कोई पूरी नहीं होगी, ये जहन में रखिएगा। हाँ, आपकी जानिब से डेडिकेशन जरूर होगी, या किसी सिंगर की फरमाइश होगी है कि जी इसकी आवाज अगर हो जाए तो क्या बात है, तो ये हो जाएगा, मगर पसंद मेरी होगी, यानी के समझ रहे हैं ना आप। अच्छा भाई, अनीस सभाई साहब ने जो हमें कुछ अशार भेजे हैं उनका मैंने हिज्जे कर लिया है। तो कहते हैं कि सहर हुई तो सितारों ने साथ छोड़ दिया, सहर हुई तो सितारों ने साथ छोड़ दिया, नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया, तेरी तलाश में ऐसी भी मंजिल आई कि खास खास सहारों ने साथ छोड़ दिया। भाई बहुत छोड़ू किस्म का इंसान है ये, हर चीज छोड़ दी यार, ना कर मेरे शहजादे, प्यार मिलने की बात करो, मोहब्बत मिलने की बात करो। अच्छा भाई, हमारी बहन जरीन नूर कहती हैं कि महबूब से बेहतर कोई भी डर नहीं होता, जो बस एक घर का हो जाए कभी बेघर नहीं होता। अभी मैंने दुरुस्त पढ़ा है, पहले मैंने दुरुस्त नहीं पढ़ा था, यानी कि समझ रहे ना, बाद में जब ट्रैक चल रहा था फिर मैं हिज्जे कर रहा होता हूँ। अच्छा भाई, दरगुजर की बातें आ गई हैं, दोनों बहनों ने कर दी हैं, जरीन नूर ने भी और सबा गुल ने भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात है, हम आज आप दोनों की नाराजगी दूर करेंगे हर हाल में। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारी प्यारी सी बहना फैसलाबाद से आ गई हैं, नौरीन तौसीफ, और इन्होंने भी इंतखाब भेजे, भाई क्या बात है, मगर हम पहले आपका मैसेज पढ़ेंगे। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज हैं, ढेरों दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन समातों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक्टिव लाला कह रहे हैं, आज फिर गर्दिश तकदीर पे रोना आया, हाय हाय हाय, आज फिर गर्दिश तकदीर पे रोना आया, दिल की बिगड़ी हुई तस्वीर पे रोना आया, इश्क की कैद में अब तक उम्मीदों पे जिए, मिट गई आस तो जंजीरों पे रोना आया। हाय हाय लाला, आज पुराने वाले लाला लग रहे हैं। क्या हसीन ख्वाब मोहब्बत ने दिखाया था हमें, क्या हसीन ख्वाब मोहब्बत ने दिखाया था हमें, खुल गई आंख तो ताबीर पे रोना आया। वाह वाह वाह वाह वाह लाला, दिल गवा कर भी मोहब्बत, दिल गवा कर भी मोहब्बत के मजे ना मिल सके, अपनी खोई हुई तकदीर पे रोना आया। मुझे एक गजल, इसका जो काफी है ना, उस पर मुझे एक रोना आया, रोने वाले

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। इश्क हो गया है दीवाना तेरा। अच्छा जनाब, अमीन साहब ने जो शेर भेजा है उसमें एक मिसरा जो है वो कुछ अजीब सी तरह का लिखा है, लेकिन मैं जितना समझ सका हूँ उस लिहाज से पढ़ता हूँ। कहते हैं कि आजा मेरी आंखों में पलकों में रहा करना, आजा मेरी आंखों में पलकों पे रहा करना, इन्हीं में दरिया है मौजों में रहा करना, मैं बाग में बुलबुल की तरह हर मैं बाग में बुलबुल की तरह हर शाख पे चीखूंगा, तुम बुलबुल बन के हर गुल में रहा करना, आजा मेरी आंखों में मेरी पलकों पे रहा करना। पूरी फरमाइश की है जनाब आपकी। फरहीन जो हैं कह रही हैं कि डेडिकेशन जरूर कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे जनाब, डोंट वरी डोंट वरी। हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब कह रहे हैं कि अभी अभी मेरी आंख खुली है, आपका जनाब मैसेज हमने पढ़ लिया था और आपके लिए बेतहाशा दुआ भी करवाई कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। और हमारे लाला ने भटक रहे हैं यजीदी फना के जंगल में, हुसैन वाला हूँ शहरे बका में रहता हूँ, मुझे जमाने की गर्दिश से डर नहीं लगता, मैं अर्ज़ इश्क के शहरे करबला में रहता हूँ। शेर मुकम्मल किया उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और जनाब अब हम इंतखाब शामिल करेंगे और पहले इंतखाब शामिल कर रहा हूं जनाब मैं। हमारी प्यारी सी बहना नौरीन ने भेजा था और कहती हैं, इतना करीब आओ कि जी भर के देख लें, इतना करीब आओ कि जी भर के देख लें, शायद के फिर मिलो तो ये जौक नजर ना हो, शायद के फिर मिलो तो ये जौके नजर ना हो, यूं उतरो मेरे दिल में आंखों के रास्ते, यूं उतरो मेरे दिल में आंखों के रास्ते, मुझमें समा जाओ नजर को खबर ना हो, मुद्दत हुई मिले नहीं एक दूसरे से हम, आज सब खिले मिटा दो कोई शिकवा फिर ना हो, मेरे सामने बैठे रहो मैं देखता रहूं, रुक जाए वक्त काश तलुए सहर ना हो, कर लो मुझसे वादा मेरे हो बस मेरे, जब साथ मेरा दो तो जमाने का डर ना हो, आए हो अब के जो तुम तो एक शबे कयाम कर लो, आए हो अब के जो तुम तो एक शबे कयाम कर लो, शायद के फिर गुजर हो तो मेरा घर ना हो, मुमकिन है तरतीब वक्त में ऐसा भी लम्हा आए, दस्तक को तेरा हाथ उठे और मेरा डर ना हो। ये जनाब हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ, उनका एक और इंतखाब है, वो भी शामिल शो करेंगे, मगर संजू का एक और इंतखाब शामिल करते हैं। कहती हैं कि सुनो सलीकाए गुफ्तार महफिले दिले मन, ए अंदाजे खाक खास, ए अंदाजे खास, ऐ मेरी दिलरुबा मैं तुम्हें किसी मिसाली पैकर की सूरत नहीं चाहता, मुझे तुम्हारा कभी बेबस खामोश हो जाना, कभी जिद पर अड़ जाना, कभी सख्त लहजे में बात करना, कभी अपनी कमजोरियों को छुपा लेना, ये भी अजीज है क्योंकि ये सब तुम्हारा हिस्सा है और मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये हकीकत है
चाह के भी इकरार नहीं कर सकता। मेरी दिलरुबा, इन निगाहों को देखो जहां सिर्फ तुम हो, मुझे महसूस करो। इल्हामी कैफियत, एक खसक, एक मिठास। सुनो तसव्वुरे जान, ऐ मेरी रूहे मन, मैं तुमको बहुत चाहता हूं, इतना कि शायद तुम तसव्वुर भी ना करो, मगर कह नहीं पाता। मेरी आंखों से तुमको महसूस होगा कि मैं तुमको बहुत चाहता हूं, मेरी बातों से तुमको मेरी मोहब्बत नजर आएगी, लेकिन मेरे लब सिले रहेंगे। सुनो तसव्वुरे जाना, ऐ मेरी रूहे मन। क्या बात है। तो ये था जनाब एक और इंतखाब संजू का, और अब आगे बढ़ते हैं। सलाम भाई, मैं राफिया, आप कैसे हैं? नदीम भाई, इस शो का मुझे बहुत इंतजार होता है, और अयूब लाला, अयूब भाई को भी मेरी तरफ से बेशुमार दुआएं, सलाम और बहुत सारा प्यार। अयूब भाई, मेरी तो दिल से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। नदीम भाई, ये अतुका खान की कोई गजल अयूब भाई को मेरी तरफ से सुना दीजिए। अतुका खान की तो नहीं, हम कोई भी गजल जो है आपकी जानिब से सुना देंगे, डोंट वरी। और बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, बुलबुल का बच्चा। शहर में ढूंढती हूं समंदर की अदाएं, मुझको मेरे मिजाज की दुनिया न मिल सकी। आय हाय, मेरी प्यारी सी बहन जरीन नूर, एक शेर भेजती हैं मगर कमाल का शेर भेजती हैं, वाह वाह वाह। शहर में ढूंढती हूं समंदर की अदाएं, मुझको मेरे मिजाज की दुनिया न मिल सकी। हाय हाय हाय, वाह वाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। अच्छा जनाब, इसी बात पर हम बढ़ते हैं एक अदद गजल नुमा गीत की ही जानिब। आवाज है मुन्नी बेगम की, और ये हमारी प्यारी सी बहना जरीन नूर की जानिब से हम संजू को डेडिकेट करेंगे, और रेहाना की जानिब से रेहाना नास को, ठीक है ना? तो जरीन नूर, ये स्पेशली आपकी जानिब से हम डेडिकेट कर रहे हैं संजू को।

वेलकम बैक आएंगे। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। मैसेजेस कर रहे हैं आप GHI स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, और उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। बात जो आज मैं आप लोगों से कर रहा था, फिलहाल तो आपके मैसेजेस और आप लोगों के इंतखाब भी जो है छाए हुए हैं। रात, तन्हाई और तेरी याद, मोहब्बत, चांद और तेरी याद और तेरी बात, अनकही मोहब्बत, अनसुने जज्बात। वैसे अनकही मोहब्बत को साइड पर रखते हैं, अनकहे जज्बात, अनसुने जज्बात, अनकहे और अनसुने। गौर फरमाइएगा इस पर। बहुत सारे हमारे जज्बात ऐसे हैं जो अनकहे हैं, दिल में ही रह जाते हैं। जज्बात जो हैं बेतहाशा समंदर की लहरों की तरह हमारे दिल के अंदर ठाठे मार रहा होता है और रास्ता तलाश कर रहा होता है कि किसी तरीके से मैं बाहर निकल जाऊं, मगर हालात जो है वो इसकी इजाजत नहीं देते और वो जज्बात फिर दिल में ही रह जाते हैं, अनकहे रह जाते हैं और दूसरे के लिए अनसुने रह जाते हैं। जिंदगी इसी तरह चलती रहती है। मोहब्बत में खामोशी भी बहुत जरूरी है। खामोशी जो है बहुत सारे मामलात को अपने अंदर छुपा लेती है और खामोशी की किताब कभी खोलनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई खामोश है तो कोशिश करें कि उसकी किताब ना खुले, क्योंकि खामोशी जब टूटती है तो जलजला आ जाता है। इंतखाब शामिल करते हैं एक और उसके बाद करेंगे कुछ चर्चा। हमको तो गर्दिश हालात पे रोना आया, हाय क्या बात है, क्या बात है संजू, यही थी वो गजल, बिल्कुल यही थी सैफुद्दीन सैफ साहब की। वाह वाह वाह। हमको तो गर्दिश हालात पे रोना आया, रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया, कैसे जीते हैं ये किस तरह जिए जाते हैं, अहले दिल की बसरे औकात पे रोना आया, जी नहीं आपसे क्या मुझको शिकायत होगी, जी नहीं आपसे क्या मुझको शिकायत होगी, हां मुझे तलखीए हालात पे रोना आया, हुस्ने मगरूर का ये रंग भी देखा आखिर, आखिर उनको भी किस बात पे रोना आया, कैसे मरमर के गुजारी है तुम्हें क्या मालूम, रात भर तारों भरी रात पे रोना आया। कितने बेताब थे रिमझिम में पिए लेकिन, कितने बेताब थे रिमझिम में पिएंगे लेकिन, आई बरसात तो बरसात पे रोना आया, हुस्ने अपनी जफाओं पे बहाए आंसू, हुस्ने अपनी जफाओं पे बहाए आंसू, इश्को अपनी शिकायत पे रोना आया, कितने अनजान हैं क्या सादगी से पूछते हैं, काबले गौर शेर है। कितने अनजान हैं क्या सादगी से पूछते हैं, कहिए क्या मेरी किसी बात पे रोना आया, अव्वल अव्वल तो बस एक आह निकल जाती थी, आखिर आखिर तो मुलाकात पे रोना आया।
سیف یہ دن تو قیامت کی طرح گزرا ہے، جانے کیا بات تھی ہر بات پہ رونا آیا ہے۔

वेलकम बैक कहेंगे जनाब, तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफी है। और उम्मीद करता हूं कि ये गजल भी आप सबको पसंद आई होगी। अपने तमाम खामोश लिसनर्स के नाम की थी मैंने खुसूसी तौर पर, और नाम भी बहुत से लिए थे। अच्छा जनाब, चंद मैसेजेस आपके शामिल करते हैं। अमीन भाई ने तो कहा था कि अर्ज किया है, क्या अर्ज किया है अमीन भाई, बताया नहीं अभी तक आपने। जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहन ने थैंक यू कहा है गजल चलाने पर, और अयूब लाला कह रहे हैं कि शो लाजवाब है, बहुत शुक्रिया आपका। और साहबजादा कह रहे हैं कि संजीदा जी का जवाब नहीं भाई, क्या बात है लाला, बहुत बहुत शुक्रिया, आज का शो उनको बड़ा पसंद आया है। और आप लोगों ने जितने भी इंतखाब भेजे थे वो तकरीबन मैंने सारे शो में शामिल कर लिए हैं। हूं आधा अधूरा मुकम्मल करो तुम, हूं आधा अधूरा मुकम्मल करो तुम, मेरे सूखे सहरा को जंगल करो तुम। कि देखे जमाने मोहब्बत हमारी, कि देखे जमाना मोहब्बत हमारी, मुझे चाहो इतना कि पागल करो तुम। कहो अपने गम से रहे साथ मेरे, कहो अपने गम से रहे साथ मेरे, ये एहसान मुझ पर मुसलसल करो तुम। उम्मीद करता हूं जनाब आपको ये इंतखाब भी अच्छा लगा होगा। खैर जी, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में इंतखाब मेरे पास तो बेतहाशा हैं, मौजूद हैं। तो आज हमने बात भी कुछ ऐसी ही की, यादों के हवाले से किया, और हमारे लिसनर इससे महजूज भी हुए, क्योंकि जिक्र ही ऐसा है, जिक्र है कई साल का, और कई साल जो है वो जिंदगी के अगर आपने मोहब्बत में गुजारे हों तो आपको कई साल चंद लम्हों के बराबर लगते हैं, बल्कि चंद मिनटों के बराबर लगते हैं, लम्हा भी बड़ा होता है। और चंद लम्हे आपने नफरत में गुजारे हों, जुदाई में गुजारे हों, तड़प में गुजारे हों, इंतजार में गुजारे हों, वो लम्हा आपको कई सालों के बराबर लगता है। तो जनाब, इसके साथ ही अब हम आपसे भी चाहेंगे इजाजत, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल स्लीपलेस नाइट में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते जावेद अख्तर साहब का की एक बहुत खूबसूरत सी गजल है, और संजू के नाम कर रहे हैं जनाब वो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।